हमें बेदारी का कोई तसव्वुर नहीं, हमें छोटी छोटी बातों में उलझाया जा रहा है, बड़े बड़े काम वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए लाजमी है कि मोमिन को अलमोमिनो कय्यिसुन फतीन, मोमिन होशियार रहता है, डीप रहता है, सुपरफिशियल नहीं रहता। एक तो बहुत तेज़ रहता है, वो हर चीज़ को बहुत गहराई की निगाहों से देखता है, हर चीज़ को बहुत गहराई में जाते हैं। अगर ये हो जाए तो इंशाल्लाह यकीनन अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होंगी। चुनांचे इसी टेक्नोलॉजिकल दौर में, इसी लूट मचार में एक कंट्री ने साबित कर दिया कि पैरों को जमाने के बाद कैसे अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, और ऐसी मदद करता है कि दुनिया कहती है कि अब ये स्टेबल है, अब इनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। वाजिल फ़राज, सबसे पहले ये आयत को जो पढ़ रहा हूँ मैं, इससे रिलेटेड बहुत सी आयतें हैं, लेकिन इब्तिदा में जो उमन पढ़ी जाती है तबरुकन तयमन, वो सूरह निसा कुरान का चौथा सूरा है, फोर्थ चैप्टर है, उसकी ये आयत है 40:40। इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिथ्क़ाला ज़र्रा, अल्लाह जो है ज़र्रा बराबर, आटम बराबर भी ज़ुल्म नहीं करता। यानी अल्लाह के पास उसके डिक्शनरी में कोई ज़ुल्म करना नहीं है। और अगर तुम इन तक हसनतन, तुम एक नेकी करते हो, तो अल्लाह जो है उसको इजाफ़ा कर देता है। जैसे कि दूसरी आयत में मन जा बिल हसना फलहु अशरु अम्थालह, जो एक नेकी करता है उसको 10 गुना अल्लाह देता है। बस को 10 नहीं है, इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, 10 नहीं है, अकॉर्डिंग टू उसकी नीयत, उसका इखलास, उसकी मेहनत, उसी में बहुत कुछ मिलता चला जाता है। एक मरतबा हम दाना एक डालते हैं, लेकिन एक दाने से बाज़ वक्त 7 दाने निकलते हैं, बाज़ वक्त 70 दाने, बाज़ वक्त 700 दाने। ये जो है अल्लाह का तरफ से मिसाल दी गई है कुरान मजीद में। और अल्लाह ये कह रहा है कि मैं कभी किसी को जुल्म नहीं करता, ज़र्रा बराबर मेरे पास इनजस्टिस का सवाल नहीं है। और अगर तुम थोड़ी सी नेकी करोगे तो उसको मैं ज़्यादा तुमको अजर दूँगा, और अजर भी मेरी तरफ से होगा, लोगों की तरफ से नहीं होगा। लोग जो देते हैं गिन गिन के देते हैं, अल्लाह ताला देता है अनगिनत। जब वो देता है तो किसी गिनने का सवाल नहीं होता। तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि दो लाइनों के दरमियान हमें इख्तियार करना। कल जो मेरी बहस थी यही थी, उसको ज़रा सा मैं एलोबरेट करूँ ताकि हमारा मरहला जो है आइंदा का आसान होते चले जाए। खुसन जवानों को पिक करना है, हमारे पास दो रास्तों से हटकर तीसरा रास्ता नहीं है। इसको समझाने के लिए एक मुकदमे से मुझे गुजरना है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, इंसान इल्म हासिल कैसे करता है, कैसे उसके पास मालूमात होते हैं। अव्वलिन चीज़ उसके हवास हैं, हवास खमसा जिसको कहते हैं, 5 सेंसेस हैं, देखता है समझता है, सुनता है समझता है, लम्स करता है समझता है, सुनता है समझता है, ये ऑब्वियस चीज़ हैं। इसको इस्लाम भी कहता है, दीन भी कहता है, सेक्युलर दुनिया भी मानती है कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेक्युलर दुनिया से मुराद जो दीन को मानते नहीं हैं, वो लोग सिर्फ कैलकुलेशन को जानते हैं, ज़ाहिर को, सिर्फ ओनली टेंजिबल दुनिया से वाकिफ़ हैं। टेंजिबल के माने महसूस दुनिया से, गैर महसूस दुनिया को मानते नहीं हैं। तो ये मजहबी दीन ये कहता है कि हवास भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और सेकुलर दुनिया भी मानती है कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेकेंड मरहला है, सिर्फ ये सोर्स काफ़ी नहीं होते, देखना काफ़ी नहीं होता, सोच सुनना काफ़ी नहीं होता, एक टूल की ज़रूरत है, वो टूल है अक्ल। अक्ल को भी सेकुलर दुनिया मानती है और हम भी मानते हैं, कुरान भी कहता है लअल्लकुम तअक्लून, ये तमाम चीज़ें तुम्हारे अक्ल के लिए, बल्कि अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुका, क्या तुम तदब्बर नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों में ताले पड़े हुए हैं। अक्ल को इनक्रेज करता है, हदीस है इमाम काज़िम अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम की, इन्ना लिल्लाहि अलन्नासि हुज्जतैन, अल्लाह की तरफ से इंसानों के पास दो हुज्जत हैं। हुज्जत क्यों, क्या कहते हैं हुज्जत, हमेशा सुनते हैं आप, हुज्जत के माना क्या है। हुज्जत है दलील, हुज्जत यानी प्रूफ, हुज्जत यानी टॉर्च,

हुज्जत के माने गाइडिंग फोर्स को कहते हैं हुज्जत। इंसान के पास दो हुज्जतें हैं, हुज्जतुन ज़ाहिरा हुज्जतुन बातिना। एक ज़ाहरी हुज्जत है, एक बातिनी हुज्जत है। हुज्जत ज़ाहरी क्या है? अंबिया, औसिया, रसूल, पैगंबरान, इमाम, ये ज़ाहिर उलमाए किराम वगैरह, ये हुज्जत ज़ाहरी हैं। हुज्जत बातिनी क्या है? हुवल अक्ल, बहुत ही अहम है। यानी अगर हम इसको समझें तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यानी दीन में दो हिस्से किए मासूम ने, एक हिस्सा अंबिया का, मुरसलीन का, नबियों का वगैरह, और एक हिस्सा है किसका? अक्ल का। तो मालूम हुआ अक्ल इस 50% जो है, ये अल्लाह ने ये हमारे पास पावर दिया है जिसके ज़रिए से हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, उसके बाद नतीजे तक पहुँचते हैं। ये अगर नतीजा अगर हम समझ जाएं कि नबी और रसूल, पैगंबरान, आइम मासमीन अलैहिस्सलाम, ये हिदायत के जितने वसीले हैं वो 50% हैं, और अक्ल ना हो तो वो 50% भी समझ में आने वाले हैं नहीं है। तो अक्ल को इतना वैल्यू दी गई है, रीज़निंग, पावर ऑफ रीज़निंग को दीन इस्लाम में। इन्हें अक्ल ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं है। मैं ज़रा सा फ़ज़ाइल का भी रुख है तो समझा दूँ। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले में। वाजिल फ़र्क, ये जो हम देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये ज़ैब पैलेस है, जनाब ज़ैनब के नाम से मंसूब है, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी वालदा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये सीनरीज हैं, ये बॉम्बे है वगैरह, ये जो फ़ैसले हैं, आया आँख का फ़ैसला है या किसका फ़ैसला है? आँख क्या करती है? आँख जो है तस्वीर को रेटिना में ला करके रोक देती है, वहाँ से प्लस और माइनस की शक्ल में मैसेज जाता है ब्रेन को। ब्रेन ये कहता है सामने तुम्हारे कौन है। होशियार हो, बाप से बात कर रहे हो, होशियार हो, माँ से बात कर रहे हो। ये जो मैसेज है ये आँख का काम नहीं है बल्कि अक्ल का काम है। उसी तरह से हज़ारों का मजमा था, उसमें एक बच्चा रोया, माँ उठी, ये मेरा बच्चा है। अरे इस हज़ारों बच्चे होंगे, तुम्हारा ही बच्चा क्या? कि ये आवाज़ जो है वो मेरे बच्चे की आवाज़ है और ये मेरा ही बच्चा है। तो आया कान का ये फ़ैसला है। कान का फ़ैसला क्या है? कान क्या करता है? अट्रैक्ट करता है आवाज़ों को। घुटना अट्रैक्ट नहीं करता, हाथ अट्रैक्ट नहीं करते, ये कान अट्रैक्ट करता। अल्लाह ने उसमें, अल्लाह ने सिस्टम में ये कानों में सलाहियत दी है कि मैसेजेस को सुन सके। और ये भी अमानत इलाही है कि हवा भी लहरों को अमीन पहुंचाती है, वही जो पहुंचाना चाहिए। मुंह से जो निकला है वही अमानतदारी से कान तक पहुंच जाते हैं। फ़ैसला कौन करते हैं कि ये बच्चा मेरा है? वो कान फैसला नहीं करता। प्लस और माइनस की शक्ल में मैसेज जाता है ब्रेन को सेकंडों में, और वहाँ पे बताता है कि ये ब्रेन, ये मेरी, ये मेरा बेटा है जो रो रहा है, या एक गीबत है, इस महफिल में बैठो नहीं। ये जो फ़ैसला इस महफिल में बैठो नहीं, कान का फ़ैसला नहीं है बल्कि अक्ल का फ़ैसला है। जब मिसाल समझ में आ गई तो समझिए कि ये सोर्सेज जो हैं, अल्लाह ने 5 सोर्सेज जो दिए हैं उसके दरमियान एक लिंक बाकी रखा है, उस लिंक का नाम है अक्ल। तो एक इंसान में एक अक्ल है, 5 हवा से 5 हैं। वजूद में बताया मारिफत हासिल करो अपने नफ्स की, तो अल्लाह की मारिफत भी तुम हासिल कर सकोगे। इसको फ़ज़ाइल में लाइए तो ऐसे ही है कि अल्लाह का वजूद है, मगर ये 5 कौन है? ये वसीले हैं अल्लाह तक पहुंचने का। जिस तरह से हवास वसीला है अक्ल तक पहुंचने का, उसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने दुआ की परवरदिगार इन्नमा इन्ना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फ़िर लना ख़ताया लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, वी डिड रॉन्ग, प्लीज़ बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। कब तक? 40 साल तक रोए मियाँ बीवी, मालिक हमने गलती की, हमने गलती की, हमने गलती की। तो जिब्राइल एक मरतबा आए, कुरान की आयत है सूरह बकरा की, और इस एक आयत की एक लफ्ज़ पर इजिप्ट का एक सुन्नी स्कॉलर मकतब अहले बैत को कबूल किया। वो लफ्ज़ ये है, व तलक्का आदमा मिन रब्बिही बिकलिमातिन। आदम को इल्का किया गया, इल्का किया कहने इंस्पायर किया गया, पहुंचाया गया चंद कलमों को, जिसके ज़रिए

0: उसने कहा कि ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो कहता है मैं घर पहुंचा तो देखिए ये है क्या, क्या गिफ्ट है। तो वह तर्जुमा था अंग्रेज़ी कुरान का, और अंग्रेज़ी का तर्जुमा। उसे कहता है कि पहला मैंने जो सूरा पढ़ा, पहला चैप्टर जिसमें इन द नेम ऑफ गॉड द ग्रेशियस द मर्सीफुल, पहले ही सफ़े ने मुझे इतना अट्रैक्ट कर दिया कि मैं और आगे बढ़ने से रुक नहीं सका। और पूरा तर्जुमा पढ़ने के बाद मैंने तय किया कि अगर दीन है तो इस्लाम ही है। यानी कुरान अरबी में नहीं पढ़ा है, तर्जुमा सही नहीं होता, कोई तर्जुमा सही नहीं होता, कॉन्सेप्ट पेश करते हैं सही तर्जुमा नहीं होता। तर्जुमा जो है, मैं तो एक जुमला कहता हूँ, काश मुसलमान मुसलमान हो जाते हैं। सलावत पढ़िए मुसलमान। आजिल फरजम, गौर कीजिए बहुत अच्छी तरह से। एक शख्स अमेरिकन सोसाइटी में रहने वाला, जिसको कहते हैं फ्री सोसाइटी कहते हैं, जहाँ पर आपको कोई तो पाबंदियाँ नहीं हैं, वो कुरान का तर्जुमा पढ़ के कहता है, एक जुमला उसका है कि इट इज़ एवरीथिंग इज़ देयर, यानी सब कुछ इसमें मौजूद है। कौन सा जुमला है? वला रब्बे वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाह। तो हम लोग ये अदल इलाही को समझने से पहले वी नीड टू पिक, हम लोगों को दो जो क्लैशेस हैं, किसी एक चीज़ को कबूल करना है, या सेक्युलर दुनिया को या मजहब की दुनिया को, दीन की दुनिया को। तब हम फैसला कर सकते हैं कि अदालत की बहस किस रुख पे हमारी जाएगी, तब पता चलेगा कि हमारा जो डिसीशन फैक्टर क्या है। अगर मादी दुनिया है तो इम्पॉसिबल है कि हम डिसाइड कर सकें, अगर मानवी दुनिया है, स्पिरिचुअल दुनिया है, इलाही दुनिया है, देर आर चांसेस कि हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकें जिसमें हम लोग दीन को अच्छी तरह से समझ सकें। इस मौजू को भी समझने के लिए कुरान मजीद एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, अल्लाह इंशाल्लाह तौफीक दें कि नमाज शब अगर आप 11 रकात नहीं पढ़ सक रहे हैं तो शुरू कीजिए 2 रकात नमाज शब, 1 रकात नमाज वतर से, हो सका तो 5 मिनट पहले नमाज से पहले उठ जाइए। 5 आयतों के पढ़ने का रिकमेंडेशन है नमाज शब से पहले। वो सूरह आले इमरान 3रा सूरह है, उसकी 190 से लेकर 194। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ध वख़्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। इन द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, ये ज़मीन और आसमान के पैदा करने में अल्लाह ने कुछ निशानियाँ रखी हैं, कुछ साइंस रखी हैं, किसके लिए? लिउलिल अलबाब, एक अजीब व गरीब लफ्ज़ है, मैं बात आती है तो बातों में बातें निकलती चली जा, अल कलाम या जुर्रुल कलाम इसे अर्ज़ कर रहा हूँ। अक्ल क्या है, लुब क्या है? अक्ल कहते हैं इंग्लिश में रीज़निंग, इंटेलेक्ट को कहते हैं अक्ल। लुब क्या चीज़ है? अरबी कुरान में दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, अक्ल भी इस्तेमाल हुए हैं और लुब भी इस्तेमाल हुआ। अक्ल क्या है? अरबी में अक्ल इकाल से है, यानी ये जो बछड़ा फुदकता है उसके गले में एक रस्सी डाल देते हैं, एक डंडा लगा देते हैं, या एक उसके घोड़े के मुँह में लगाम लगा देते हैं, इसको कहते हैं इकाल। यानी कंट्रोल करने वाली चीज़ का नाम है अक्ल। यानी इंसान को यानी बुराइयों से कंट्रोल कर ले तो अक्ल है, अगर वो अक्ल बुराइयों से रुकता नहीं है तो वो अक्ल ही नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अक्ल की जो तारीफ़ की गई वो ये है कि हक़ व बातिल में जो मीज़ान का काम दे, यानी तमीज़ का काम दे, उसको कहते हैं अक्ल। यानी हक़ व बातिल की जो टकराव है, कौन फ़ैसला करे ये हक़ है ये बातिल है, फ़ैसला कौन करती है? अक्ल। तो ये हक़ व बातिल में फ़ैसला करने वाली क़ुव्वत का नाम है अक्ल। फिर लुब क्या है? कि लुब बातिल को देखती नहीं, जो देखती हक़ देखती है। यानी उलुल अलबाब वो हैं जो किसी चीज़ को बातिल नहीं देखते। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। बाली मोहम्मद वाजिल अल्लाह। फिर वहीं रुक दिया क्या? पढ़िए आप और आगे।
1: मोहम्मद आले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलवा।
0: कल के वो मुकदमे के एक्सपेक्ट

एक्शन था। अब जो आगे बढ़िए, बहस ये होती है अदालत में कि जबर और इख्तियार, जबर और इख्तियार भी मुकदमे हैं अदालत का। अगर ये समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी से मराहल हल होते हैं। मैं मिसालों के ज़रिए से समझाता हूँ जबर क्या है, इख्तियार क्या है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ ना यूज़ करें, मगर बाज़ वक्त बोलना ही पड़ता है। जबर कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन को, इख्तियार कहते हैं चॉइस को। इंसान के पास आया इख्तियार है या नहीं है, है कि नहीं है इंसान के पास? आइए, हम लोग मजलिस में बैठे हुए हैं, आपके पास चॉइस था कि मजलिस में आए या ना आए, या ये मजलिस में जाएं कहीं दावत वाली मजलिस में जाएं, ये जहाँ नो तोड़ो मिला है जी, या आपको इख्तियार था भाई, आपने चॉइस किया, ये चॉइस को क्या कहते हैं? तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। मजलिस में जाने का जो इरादा आपने जो किया है, आपके पास तीन चॉइसेस थे, या आए या ना आए, या एक रास्ते तक आए, रास्ते में फिर पलट के चले जाएं, ये भी आपके पास इख्तियारात थे। इन तमाम इख्तियारात को ख़त्म करके जो आप पहुंच गए हैं, ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसका क्या नाम देंगे? आया इख्तियार है आपका, आपका चॉइस है। एक और मिसाल देता हूँ, बहुत मसाला आसान हो जाता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, मोमिनीन कुछ यहीं से आए, करीब से आए हैं, कोई अंधेरी से आए माशाल्लाह जी, दूर दूर से अभी आए हैं। कितने मिनट का रास्ता है अभी वहाँ से आने के लिए? 40 मिनट, 45 मिनट्स, ठीक है 45 मिनट्स लगे अगर ड्राइव करके आए, तो ट्रेन से आए तो कुछ और टाइम लगा। मालूम है मैंने टाइम लगाया, ये टाइम मेरा इतना लगेगा, मुझे जाना है, मजलिस शुरू होती है 9 बजे और यहाँ स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, बाकरी तो और स्ट्रिक्ट करता है, तो वो 9 बजे बैठ जाता है, 9:05 पर तो हमको पहुँचना है। उसी हिसाब से आपने 1 घंटा पहले अपने इरादे से निकले, पूरा पक्का इरादा तक पहुँचने का, रास्ते में एक ऐसी चीज़ हुई जो आपको इल्म ही नहीं था, या गड़बड़ हुई या कोई एक्सीडेंट हुआ, रास्ते में बंद हो गया रास्ता, फिर उसके बाद पलट के उधर रास्ते में गए, वो बंद रास्ता मिला, उसके बाद वो रास्ते आ गए, चारों तरफ से रास्ते बंद थे, यहाँ पहुँच ही नहीं पाए, इरादा तो किया था तवज्जो, लेकिन पहुँच ही नहीं पाए, इसका नाम क्या देंगे आप? यही, इसी का नाम है अल्लाह की तरफ से इरादे का नाम है जबर। यानी ज़ात परवरदिगार जो है सेट ऑफ आइडिया उसको उसके हाथ में रखा है, तुम्हारे पास इख्तियार दिया है, तुम पूरा एक्सप्लोर करो, जो चाहे तुम करो, लेकिन याद रखो जब तक कि हमारा इरादा शामिल नहीं होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये जो हम लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, एक सेक्युलर दुनिया नहीं कहती, सेक्युलर दुनिया कुछ और दुनिया में रहती है, वो रीज़निंग जो है कुछ उनकी और होती है, लेकिन हम लोग चूँकि दीनदार हैं तो हमने रास्ता इख्तियार किया, किस रास्ते को? दीन के रास्ते को। दीन का रास्ता क्या है? ज़ात परवरदिगार, क़ुरान है, वह अंतुमुल फ़ुक़रा, बहुत खूबसूरत है, क़ुरान कहता है अंतुमुल फ़ुक़रा, फ़ुक़रा फ़कीर की जमा है, फ़कीर उर्दू में कहते हैं डेस्टिट्यूट को जी, फ़कीर जो मांगने वाले को, लेकिन अरबी में फ़कीर मांगने वाला नहीं है, जो अटैच्ड रहता है उसको कहते हैं फ़कीर। शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम अलैहा के छोटी छोटी दुआएं हैं, मौला इमाम सज्जाद की दुआएं ज़रा सा बड़ी हैं, रोज़ाना की, रोज़ाना इतवार को ये पढ़िए, पीर को ये पढ़िए, मंगल को ये पढ़िए, शहज़ादी की भी दुआएं हैं, अगर चाहें तो मैं इंशाल्लाह मैसेज में दे दूँगा ताकि आप लोग इस्तेफादा करें, बहुत ही खूबसूरत दुआएं। हफ्ते के दिन की दुआ में शहज़ादी ने ये कहा है, वला तहविजनी वला तुफ़िरनी इल्ला अहदिन सिवाक, परवरदिगार तू मुझे किसी का मोहताज ना बना, किसी का फ़कीर ना बना मगर तेरा। तो ये क्या कहना चाह रही हैं? क़ुरान कह रहा है अंतुमुल फ़क़रा हुवल ग़नीयुल हमीद, तुम फ़कीर हो, अल्लाह कौन है?

इंडिपेंडेंट है, चूंकि तुम डिपेंडेंट हो, इख्तियारात भी महदूद हैं, तुम्हारा इख्तियार चॉइसेस भी तुम्हारे महदूद हैं और तुम्हारा डेस्टिनेशन भी महदूद। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। जबर व इख्तियार की बहस में बाज़ वक़्त ये मिसालें दी जाती हैं ताकि बात समझ सके। इमाम मासूमीन जो गुफ्तगू करते थे लोगों से, वो पहले उसके स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग को देखते थे, लेवल ऑफ परस्पेक्टिव को देखते थे। हर एक को एक ही लाठी से नहीं चलाते थे। एक मौला के पास आया शख्स, मौला ये क्या है, ये जबर इख्तियार, ये क्या चक्कर है ये? मौला ने कहा एक पैर उठाओ। हाँ, उसने पैर उठा लिया। मौला ने कहा दूसरा उठाओ। उसने कहा नहीं उठा सकता मैं। मौला ने कहा इतना इख्तियार है कि तुम एक पैर उठा सकते हो, इतने मजबूर हो कि दो नहीं उठा सकते। अब चलते हुए भी एक पैर जमीन तो नहीं हो सकता, फुदकते हुए जाए इंसान, एक पैर ज़मीन पर कितना ही फास जाए उसको एक पैर ज़मीन पर। तो अल्लाह ये कह रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी भी एक कदम अल्लाह के हाथ में है, एक कदम तुम्हारे हाथ में है। जो मोमिन वो है ये कहता है पूरे कदम उसके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जबर व इख्तियार को समझने के लिए और एक मिसाल देता हूँ, ज़रा सा मज़ेदार मिसाल है, बहुत अच्छी तरह से समझिए। किसका बाप बनूँ मेरे हाथ पे इख्तियार नहीं है जी, किसका बेटा बनूँ इख्तियार नहीं, वरना होता तो कहीं चले जाते थे माशाल्लाह, किस किंग के घर में पैदा जी। किसका बेटा बनूँ कि इख्तियार नहीं है, किसका बाप बनूँ इख्तियार नहीं है, किसका दादा बनूँ इख्तियार नहीं है, किसका चचा बनूँ इख्तियार नहीं है, इख्तियारात नहीं है नहीं है, मगर एक इख्तियार है किसका शौहर बनूँ, वो भी लव के चक्कर में परेशान हो जाता जी, वो भी गड़बड़ कर लेता है। एक अल्लाह ने इख्तियार दिया, वो इख्तियार तुम एक्सप्लोर करो यार। अल्लाह ने कहा कि तुम ऐसे ही जाकर के आंखों आंख बंद करके ना शादी करो, बल्कि देखो फजाइल का रुख है। ज़रा सा आप लोग मुस्कुराएं, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। लैलतुल हरीर सिफीन में एक रात का नाम है जिसमें दिन के साथ रात में भी जंग हुई, और एक तरफ मालिक अश्तर एक तरफ मौला, और जो मालिक अश्तर के सामने जो आता था अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मौला एक ये एक अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालिक अश्तर ने गिनना शुरू किया 999 मैं और मौला सिर्फ एक काम। मौला ने घोड़े को दौड़ाया, मालिक हैं ये कियास कैसे कर लिया, तजदीद बैत करो, तुम्हारे सामने जो आया तुम कट कर दिया, कत्ल कर दिया। मैंने सत्तर नस्लों को देखा, अगर एक मोमिन था तो मेरी तलवार रुक गई। जो सत्तर नस्लों को देखने वाला किसके पास आ रहा है, अकील के पास। अकील कौन है, मौला के भाई हैं जो जीनियोलॉजी के उस्ताद हैं, मास्टर। जीनियोलॉजी के माने पूरे अरब के कबीलों से वाकिफ़ हैं, पूरे नस्बों से वाकिफ़ हैं। भैया मेरे मुझे ऐसे घराने में शादी करा दो जिससे एक मेरा बेटा पैदा हो जो मेरे मेरे हुसैन की मदद कर सके। हमारा सवाल है कि रात को सत्तर नस्लों को देखते हैं, फिर भाई से क्यों पूछ रहे हैं? इसका जवाब दो है, एक है ताकि भाई में भी वो जज्बे इसार पैदा हो कि वो ज़माना जो आने वाला है अपनी औलाद को देने के लिए भाई भी तैयार हो। दूसरा ये कि प्रोफेशनलिज्म का एहतराम करो। तवज्जो, बहुत अच्छी तरह से तवज्जो भाई। यहाँ पर कोई हमारा जो है सी ए कहाँ जो है उन्हें ऑफिस खोल के रखा हुआ है, कम्युनिटी चाहिए कि जाकर के उसको ऑफिस को ज़रा ये दें, हमारा हमारी कम्युनिटी का आदमी है। इसी तरह से बिजनेस में आप लोग कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों को आप मदद करें। मौला ए कायनात ये फरमा रहे हैं ये प्रोफेशन का ये खोला हुआ है ऑफिस, इस प्रोफेशन को मुझे एहतराम करना चाहिए, इसे पूछना चाहिए। या ये कि हम इज्तिहाद मुज्तहदीन का रेस्पेक्ट सिखा रहे हैं कि तुम अगर मालूम नहीं है तो उनसे पूछो जो मालूम करना है। सलवात पढ़िए मामले वाले। वाजिल फरज, ये हो गए कल से अब तक के मुकदमे। अब आइए आगे बढ़िए, इसका नाम है व्हाट इज़ जस्टिस, जस्टिस किसको कहते हैं। तो अब हम लोग तय कर लिए ना, अभी हम लोग हैं ना अच्छी तरह से तय कर लिए कि हम सेकुलर दुनिया को
नहीं मान रहे हैं, किसको दुनिया को मान रहे हैं, दीन की दुनिया को क्यों मान रही है, हमारे अक्ल ये कह रही है कि परफेक्शन जो है

वही में है, उससे हटकर कहीं परफेक्शन हमें मिलता नहीं है। ये हमारी अक्ल ने फैसला किया है कि जो कहाँ से मौलाना, जवाब दूंगा मैं आपको, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कब बताया गया साइंस ने? अभी हाल हाल में बताया उन्होंने, 50-60 साल या 100 साल के अंदर। जिसको 1400 साल पहले कुरान ने समझा दिया था कि दुनिया में ज़मीन सेंटर नहीं है या कोई और प्लानट सेंटर नहीं है, शम्स सूरज सेंटर है। कैसे? सूरह यासीन पढ़ते ही रहते हैं, व शम्स तजरी लमुस्तकर लहा ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम। इसमें तकदीर भी है, बहुत ही खूबसूरत है। तकदीर के माने सेट ऑफ रूट हैं, वो जो सेट ऑफ रूट हैं अल्लाह ने सेट कर दिया है। तो कौन मूव हो रहा है? सूरज। सूरज मूव हो रहा है तो पूरी गैलेक्सीज मूव हो रही हैं। 170 बिलियन कहकशाने सूरज के साथ महसूस मूव हो रही हैं। कुरान ने 1400 साल पहले बताया। तो हमें कुरान को अकली तौर पर इसलिए मानना है, साइंस जो अब बता रही है वो 1400 साल पहले बता चुकी है। ना सिर्फ एक साइंस, 50 किस्म के साइंस, साइंटिफिक चीज़ें। मैं हर साल हर मजलिस में कोशिश करता हूँ, रहूँगा एक एक आयत जो है आपको साइंटिफिकली बताएं, ताकि जवान बच्चे कुरान से लगाव पैदा करें, रिसर्च करें, कुरान को रिसर्च का सेंटर बनाएं। ना ये कि सिर्फ कुरान मरहूमीन के सराहने पढ़ा जाए, यकीनन वो मोटिवेशन फैक्टर है। कुरान आया था जिंदों को ज़िंदा करने के लिए, अगर ज़िंदगी पाने के लिए, कि हम लोगों ने कुछ और बनाया है। तो कुरान के लिए हमारे पर्सपेक्टिव्स को चेंज कीजिए, इंशाल्लाह मसाइल हल हो जाएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिथ्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर नहीं करता तो मैं गरीब क्यों हूँ? अगर नहीं करता तो मैं वो फलां अमीर क्यों हैं? अगर नहीं करता जुल्म तो मैं काला क्यों हूँ? अगर मैं नहीं करता जुल्म तो वो गोरा क्यों है? हैं, मैं नहीं करता जुल्म तो मैं ठिन्ना क्यों हूँ? वो क्यों चौड़ा लंबा माशाल्लाह हैंडसम है? ये जो डिफरेंसेस को देखता है इंसान, तो कहता है कि ये जो डिफरेंसेस हैं, वाई दीज डिफरेंसेस? इसका जवाब है एक दो मजलिस में नहीं, आसान नहीं है मसला हल करना है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करेंगे, हम लोग इन बातों को अच्छी तरह से दर्क करें, अच्छी तरह से समझें। इसके मजालिस जो हैं, ये दरसगाह है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और मैं कहा करता हूँ, यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको एज की कैद है, आपको एजुकेशन की कैद है, हर एक जाता नहीं है, उसमें एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी देना है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, कल का जाने वाला भी बैठा है, कल का आने वाला भी बैठा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अमूमन हमारे यहाँ क़िबला भी तशरीफ़ फरमाया है, हमारे यहाँ समझाने के लिए कहा जाता है फ़िलासफ़ी में, कि किसी भी शय को पहचानना है तो कैसे पहचाने? तो अरफुल आशिया भी अददा दिया। किसी शय को पहचानना है तो कैसे पहचानो? ऑपोजिट से पहचानो, इजी हो जाएगा। किसी भी शय को पहचानने का तरीका क्या है? ज़िद से पहचानो। रात को पहचानना तो कैसे पहचाने? दिन से पहचाने। फूल को पहचानना तो कैसे पहचाने? कांटों के ज़रिए से पहचाने। और मर्द को पहचानना तो कैसे पहचाने? बोलिए, शर्मा रहे क्या? औरतों से पहचाने, मर्द औरत से पहचाना जाता है, और कॉन्ट्रडिक्शन से पहचाना जाता है। शायद इसीलिए है हम फातिमा व अबू हा व बा। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये अदालत को पहचानना है तो अदालत का अपोजिट क्या है? जुल्म है। अदल का अपोजिट क्या है? जुल्म। जुल्म की तारीफ जो की गई है, वदउ शय फी गैर महलही, मिसप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट। मसलन ये मेंबर है, मैं बैठा हुआ हूँ, सामने देख रहा हूँ, इस मेंबर को उलट दें, वो क्या हो गया? जुल्म हो गया। ये अमामा सर पे है मगर पैरों में ला दूँ, क्या है? जुल्म है। तो यानि कोई शय को उसके मकाम से हटा देने का नाम है जुल्म। तो अल्लाह ये कह रहा है कि मैं किसी शय को अपने मकाम से हटाता ही नहीं,

अच्छी चीज़ है। अच्छा भाई क्यों मोहब्बत में रोए? कहा इसलिए कि ये अली का उरूज था, यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फजाइल, और ये देख रहे थे अली का नुजूल। अस्तग़फिरुल्लाह, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। इससे पता चलता है कि गदीर ही से खुदा जिसको कहते हैं प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। जब देखा कि ये जो है मंजर गदीर इतना वाज़े कर दिया है रसूलुल्लाह ने, अब इसके पीछे काम होना चाहिए। तो काम इतना किया कि 70 डेज में इतना बड़ा इवेंट भुला दिया गया। 18 ज़िलहिज से 18 मुहर्रम एक महीना, 18 मुहर्रम से 18 सफ़र दो महीने, और 28 सफ़र इस दुनिया से सरकार गए। एग्जैक्टली 70 डेज में इतना बड़ा इवेंट क्या कर दिया गया? बुला दिया गया। जैसे कि कल मैंने इशारा किया था आयतुल्लाह जवाद अमली का कि करबला गदीर में हुई। कैसे करबला गदीर में हुई? इसलिए कि 1,25,000 के मजमे ने अली को तनहा छोड़ दिया और गले में अली के रस्सी आ गई। 1,25,000 का मजमा, अगर सही रिएक्ट होता तो ये मसला होता ही नहीं था। शहज़ादी फ़ातिमा ने हमसे कभी पूछते हैं लोग कि करबला कहाँ से शुरू हुई? करबला गदीर से शुरू हुई, प्लानिंग वहीं से शुरू हो चुकी थी। चूंकि सरकार ज़िंदा थे तो दिलों का बक्स दिलों में था। सरकार इस दुनिया से गए, अभी कफन मैला भी नहीं हुआ था, दरवाज़ा फ़ातिमा जहरा पे आ गए। ये कौन सा दरवाज़ा है जिस पर 6 महीने तक फ़ख्रुद्दीन राज़ी, ख़ुद उनकी तफसीर में आयत तथहीर के नाजिल होने के बाद 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक रसूलुल्लाह नमाज फ़ज्र पढ़ने के बाद असहाब के साथ आते थे। अंदर भी मौला का दरवाज़ा था, वहाँ नहीं, बाबे जिब्राइल जिसको कहते हैं वहाँ पर आके रुकते थे। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा व मादन रिसाला व मख्तलफ़ल मलाइका व महबत अलवही व तंजील। 6 महीने 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक हर रोज़ बाप आकर के सलाम कर रहा है। उस बेटी का कितना दिल बढ़ गया होगा कि जिस पर आकर के बाप सलाम कर रहा हो। अभी कफन मैला भी नहीं हुआ था, दरवाज़ा फ़ातिमा पर आए, ए फ़ातिमा अली को भेज दो वरना इस घर को हम जला देंगे। दरवाज़े पर आ गए थे, शहज़ादी समझ गई ये लोग कौन हैं, अभी टेस्ट करना चाह रही हैं कि ये लोग इंसान भी हैं कि नहीं हैं। तो शहज़ादी ने कहा तुम्हें मालूम है कि इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उन्होंने कहा हो तो क्या हो, तारीख़ कहती है कि दरवाज़े को पैर से ढकेला गया। दरवाज़ा जब हम कहते हैं हमारे जहनों में जो ये सॉफ्ट दरवाज़े आजकल के, मगर दरवाज़े 100 साल पहले के, दरवाज़े 1400 साल पहले के जिसमें कीले हुआ करते थे, जो सॉफ्ट नहीं थे। शहज़ादी कौनैन दरवाज़े और दीवार के दरमियान साहिब दमतु साकिबा का जुमला है, फ़ासा रहा जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। या अबता कह कर के शहज़ादी गिरी। एक जुमला और भी कहूँ यहाँ पर रोने के लिए है, अल्लाह ज़ियारत ले कुछ ले जाए लेकिन मारिफत के साथ ज़ियारत कीजिए। ज़ियारत जो है पहचान के साथ होगी। हदीस में है मनजाराना और फन बेहक़ना वजबत लहुल जन्ना, जो हमारी ज़ियारत करे मगर इरफ़ान ज़ियारत हो, मारिफत ज़ियारत हो, इन डेप्थ नॉलेज हो, तब कहीं जा कर के इसका सवाब होगा। जब जाइए तो करबला या किसी भी मासूम के पास ज़ियारत को पढ़िए तर्जुमे के साथ, पहले समझिए। मौला अली की ज़ियारत का टुकड़ा है जो किसी के लिए नहीं है। क्या टुकड़ा है? अस्सलामु अलैका या असबर साबरीन, ए सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले। मौला हुसैन के लिए नहीं है, मौला अली के लिए। या असबर साबरीन, सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला। क्यों भाई सबसे ज़्यादा? जिसके हाथों में खैबर के दरवाज़ा उखाड़ने की ताकत थी, वो देखता रहा उसका दरवाज़ा जलता रहा।

0: नायला, माँ की जान उठो, ख्वाब देख रही हो क्या?
1: जैसे ही आंखें बंद करती हूँ, मेरे सामने वही मंजर आ जाता है। मैंने ख्वाब देखा कि
0: बस गुजर गया। इस ख्वाहिश को किसी से बयान मत करना।
1: डर रही हूँ।
0: किस चीज से मेरी बेटी? तुम तो अपने घर में बैठी हो और मेरे पहलू में हो।
1: मौत से। जोसमनी उस दिन के बाद से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जब कुछ लोगों को मेरी नजरों के सामने ज़बह कर दिया गया।
0: तुम पे फिदा हो जाओ। मगर क्या अब तक ऐसा हुआ है कि बाजार के बीच तुम्हारे जिस मुजान की कीमत लगाई गई हो, बेचा गया हो, तुम्हें कनीजी में ले गए हो? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम यहाँ हो, हमारे पास हो। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरा कल गुजर चुका है, तुम्हारा भी गुजर जाएगा। वक्त लगता है मगर गुजर जाता है। जरा उठो और ये पानी पी लो।
1: काश दिन भर कोई निगाहबान इस कमरे के बाहर पहरा देता।
0: तुम्हारे अब्बू से कहूंगी, मगर ऐ काश कि तुम भी जरा घर से बाहर निकलो, जरा बाजार और गली में जाओ, अपनी तबीयत को सुधारो बेटा। आज होना ये था कि तुम्हारे बाबा नईम को तिजारत खाने में उस

0: मरहूम की जगह मालिक को मुख्तार बना दे।
1: बेटा तुम्हें अब अपनी तबीयत पर ध्यान देना होगा।
2: तुम मेरे पास रहोगी?
1: अच्छा ये होगा कि मैं चली जाऊं, मगर तुम चाहती हो रुक जाऊं तो। नायला,
0: अगर मैं औहद, शमीम और हजारों निगाहबान भी तुम्हारे पास रख दूं, जब तक तुम खुद न चाहोगी, गम और डर की परछाई तुमसे दूर नहीं होने वाली। बेटा डरो रो, मगर जान लो कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना होगा।

0: जनाब औहद है
1: जी है काम क्या है
0: उन्हीं से बताऊंगी
1: अगर कोई काम है तो मुझे बताइए
0: बोला ना उन्हीं से बताऊंगी
1: बाहर निकलिए
0: जनाब औहद
1: बाहर निकलिए यहाँ से
0: जनाब औहद छोड़ो मुझे जनाब औहद
1: मेरी बात समझ में नहीं आ रही
0: चलिए
1: बाहर निकलिए यहाँ से निकलिए अरे आप जाती क्यों नहीं है
0: शादी नहीं की काले कपड़े उतार लो चूंकि तुम्हारे दामाद ने जहन्नम का रास्ता अपना लिया है और तुम्हारी दुनिया जन्नत में बदल गई छोड़ो मुझे छोड़ो बुलाया मेरे बहन रहना इस खानदान ने मेरी शोहर की दुनिया भी बर्बाद कर दी और आखिरत भी
1: मैं कह रहा हूँ अपना मुंह बंद कीजिए
0: पहले मेरे शोहर का भाई रागिब के कारवा की हिफाजत करते हुए मारा गया और अब जुनैद नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया दो भाइयों का मुआवजा भी नहीं दिया
2: आराम से रहो सब्र करो
0: और खुदा तुम्हें भी माफ ना करे
1: तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही जाओ
0: ऐसे उसके कान में अली के बारे में बोला पता नहीं मौत के वक्त मेरा शौहर हमारे दीन पर था या तुम्हारे दीन पर छोड़ो मुझे
3: ये क्या हो रहा है
4: यहीं पे इसके हाथ बांध दो और बगलों से उठा लो
0: छोड़ो मुझे
4: छोड़ दो उसे दौलत से उसका मुंह बंद कर दो घर का ध्यान रखना

0: रही है। आज एक नया काम और क्या भरोसा, कल को अपने शान के मुताबिक कोई हमदम खुदाया। खुदा को पसंद नहीं आएगा कि उसके रसूल की सुन्नत में ताखीर करो।
1: खुदा करे दुल्हन सजने का वो दिन जल्दी आए। कूफे की दिलबर
0: इलाही आमीन।

0: काफी लंबे हो गए हैं।
1: आखिरी बार तुम्ही ने तो छोटा किया था। हिलाल के बाल के ख्वाब के बारे में सामिया के अलावा कोई नहीं जानता।
0: कोई जानेगा भी नहीं।
1: पूरे शहर से इमाम की दावत के लिए दस्तखत लिए गए हैं मुझे छोड़ के। लग रहा है अपने बेटे से उम्मीद खत्म कर चुके।
0: अगर दस्तखत करने का शौक था तो खुद ही आगे बढ़ते। तुमने सामिया से अपने गुस्से को इमाम के सर बांध दिया। खत, कासिद और स्याही तुम्हारे पास ही थे।
1: क्या कासिद?
0: फाजिल ने मुझे याद दिलाया कि बासित नाम के एक अमानतदार को छुपा रखा है। हालात इतने खराब हैं कि नामावर का शहर से बाहर जाना नामुमकिन हो गया है। आवाम में से कोई ये काम कर सकता है? बिल्कुल बासित जैसा।
1: आहिया जानती है

0: हम तुम पे कुर्बान जाएं।
1: खुदा ना करे ऐसा हो।
0: सारी बुरी नजरें दूर रहे तुमसे, हमेशा खूबसूरत लगती रहे। आपका घोड़ा भी जीन के साथ आंगन में तैयार है।
1: तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मुझे अगर तुमको मारना होता तो जुनैद को उसका काम पूरा करने देता, या तुम्हारी अधमरी लाश को काफिले के बीच छोड़ देता ताकि डाकुओं का शिकार बन जाओ। कभी अपने आप से नहीं पूछा कि क्यों मैं तुम्हें वापस कूफा ले आया। अगर नहीं जानती तो जान लो, तुम्हारे बाप को जुनैद के बारे में सब कुछ पता है। उसका इनाम भी पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया।
1: क्या किया?
0: काम और निगहबानी से मुझे निकाल दिया।
2: ये उसका तरीका नहीं था। तुमको अच्छी तरह पता है कि अगर मंजिल औहद के गोदाम तक है ये बता देते तो कभी उसके सामान को हाथ नहीं लगाता।
3: आप उसका थोड़ा सा लिहाज करो, इस वक्त वो गम है, सोचिए कि खुदा की राह में कुछ कर दिया है।
2: बस करो,
4: आपकी नेक दुआएं मेरे बेटे के साथ।
5: खुदा नईम इब्ने औहद की हिफाजत करे।
6: आमीन।
4: और आखिरी बात, ये फैसला कर लिया है कि हिलाल बिन हनीफ की जगह दूसरा कमांडर और निगाहबान तलाश कर लो। ये मसला बुजुर्गों और तजुर्बाकारों के हवाले कर दो, या फिर जांचने के बाद किसी को चुना जाए। अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह।
7: बाबा की और आप लोगों की मोहब्बत को बस इस तिजारत को आगे बढ़ाने के जरिए ही चुकाया जा सकता है। दो चीजें मेरे लिए अहम हैं, और वो है औरत का हक और दूसरा हलाल माल।
3: खूब।
7: अगर कोई भी चूक गया तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह खसारा होगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, खानदान के रस्म और इस तिजारत खाने की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा कदम है जो कि नईम को मिला है। मिठाई से अपना मुंह मीठा कीजिए, मीठा कीजिए, लीजिए।
3: सलाम वाले।
8: शाम के दरबार से एक पैगाम आया है जिसके लिए मेरे अमीर जनाब नुमान का हुक्म है कि एहतराम के साथ आपकी हुजूर में पेश करूं।
3: यजीद इब्ने माफिया।
8: जी हाँ।
3: क्यों इसकी जहमत नुमान को दी? हमारे पास भी खत आते ही रहते हैं।
8: जरूर कुछ खास रहा होगा।
3: खुदा आपका हाफिज हो।
7: मेरे हवाले कर दीजिए।
8: सलाम हो औहद की बेटी पर।
3: जंग है क्या जो जंगी लिबास पहन रखा है?
1: आजकल हर लम्हा एक जंग में गिरफ्तार हूँ कि इस बार मेरे मद्दे मुकाबला आप हैं।
3: चलो।
7: आप अपना मुंह मीठा कीजिए।
2: सलाम अलैकुम।
9: वाह भाई। वालेकुम अस्सलाम बासित, कैसे हो?
2: ठीक।
9: बिल्कुल सही वक्त पर आए, ताज़ा ज़बह की।
2: बहुत शुक्रिया, दूसरे काम से आया हूँ।
9: बोलो।
2: हिलाल को मैदान और बाजार के दरमियान नहीं देखा?
9: ये हिलाल, अगर उसने अपनी माँ की नसीहतों को सुना होता तो इस वक्त उसे मेरी दुकान में पाते। अगर तुमने हिलाल को देखा है तो मैंने भी देखा है। वैसे कुछ हुआ है क्या?
2: नहीं।
9: बासित, अगर वो कहीं दिखे तो कहना फाजिल सुबह से इंतजार कर रहा है।
3: तो वो गिड़गिड़ाने लगा है। काश मेरे सामने जाहिर

0: शायद उसके लिए नरम दिली आ जाती।
1: आपकी रहम दिली का जायका बाहर निकलते वक्त अच्छी तरह चक चुका है।
0: सुनो नायला, हिलाल ने अपनी जिम्मेदारी पे अमल नहीं किया। जो भी जिम्मेदार ना बन सके मेरे किसी काम का नहीं।
1: कौन सी जिम्मेदारी जबकि उनकी तादाद हमसे कई गुना ज्यादा थी।
0: दूसरे सिपाही और कमानदारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा। सिक्का भी तो उस पर खर्च किया है ताकि 10 से भी ज्यादा लोगों का मुकाबला कर सके, ताकि जो हुआ वो ना हो। बगैर किसी शर्मो हया के सीना फैलाए हुए जनाजों की फौज लेकर वापस आया है।
1: भाग भी तो सकता था, मेरे लिए वहां रुककर लड़ता रहा।
0: बस करो अब।
1: अजीब वक्त आ गया है जो कि बेगैरत और नामूस बेचने वालों के जनाजों के सामने एहतराम में कमर खम की जा रही है। अपनी बेटी के बचाने वालों को जलील किया जा रहा है।
2: अपने बाप का एहतराम करो बेटा, सोचो अपने बाप से किस तरह बात कर रही हो तुम।
1: नायला की अगर कोई अहमियत होती तो उसे बचाने वाला भी काबिल एहतराम होता। गम में मुब्तिला हो ना बाबा कि मेरा शौहर मर गया और मैं जिंदा वापस आ गई।
0: नायला,
2: तुमसे कहा कि बाप का लिहाज करो।
3: दरवाजा बंद करो।

0: इतने बेहसास है बाबा, हिलाल मेरी जान की हिफाजत के लिए रखा गया था ना, उसे इनाम देने के बजाय काम से निकाल दिया है। हिलाल बेहतरीन इनाम का हकदार है, आपको उससे इस तरह से पेश आने की कोई जरूरत नहीं थी।
1: ये आवाजें तो सुन रहे हो ना तुम, पता नहीं क्या मंसूबे बना रहे हैं ये। उठोगे नहीं? तुम्हारी बहन के बनाए गए इस फितने में यहाँ बैठने का वक्त नहीं है अब।
2: अब उसका नाम ज़बान पर मत लाना।
0: अगर हिलाल ना होता तो मैं मर चुकी होती बाबा।
2: बस करो।
3: नायला, तुम्हारी आवाज मर्दों तक पहुंच रही है, अगर इज्जत का ख्याल रख लो तो बड़ा एहसान होगा।
0: मुझे माफ कर दो, भाई की इज्जत पे मेरा ध्यान नहीं था।
1: अपने मर्दों का ख्याल नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर तुम पे कुर्बान जाऊं, इतना तो सोच लो कि ये लोग क्या कहेंगे। हिलाल हिलाल कहने वाली तुम्हारी आवाज पूरे तिजारत खाने में गूंज रही है।
0: तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, ना ही मेरे घर के मर्दों की, क्योंकि आज जितना भी सर घुमाती रही कोई मर्द हिलाल के अलावा देखने को नहीं मिला।
3: अपना मुंह बंद करो, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया तो समझ जाओगी तुम्हारे बहादुर कमांडर ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। शुरू से ही तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था।
1: शुरू से क्या मतलब?
3: राघिब के इरादों को जान गया था, देर हो चुकी थी, काफिला निकल चुका था, हवाले कर दिया था कि कोई जिंदा वापस ना आए मेरी बहन के अलावा। खुदा की कसम जो भी किया गैरत की दहकती आग के सबब से था, चाहता नहीं था कि देर हो जाए।
2: मैं शामिल नहीं था,
3: बाबा को नहीं पता था, मैं अच्छे बुरे की पहचान ना कर सका। कुरान से इस्तिखारा देखा, खुद ही हमले का हुक्म दिया, फिर तुम्हारे आने के बाद तमाम माजरा बाबा को बताया।
0: अगर मर्द होते तो खुद ही आते और मुझे रागिब से बचा लाते, मेरे सामने उनके टुकड़े टुकड़े करते और उनका कलेजा बाहर निकालते ये मंजर देखने के लिए मुझे तनहा नहीं छोड़ते। क्या सही में इस उम्मीद में थे कि मैं जिंदा हूँ?
3: खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा और सलामत हो।
0: जिंदा हूँ नहीं, जिंदा हूँ नहीं, मुझे माफ कर दो कि मेरे खुशकिस्मती ने तुम्हारे मंसूबों पर पानी फेर दिया।
3: ज़बान संभाल के बात करो।
4: नहीं, काश बड़े भाई होने के खातिर तुम चुप हो जाओ, ताकि इसकी तबीयत को और ज्यादा खराब तुम ना करो।
0: ये पहले ही अपनी भाईचारगी खत्म कर चुका है। जब खंजर मेरे गले पर चलने वाला था, इसकी भाईचारगी को जुनैद की आंखों में देख लिया था मैंने।
2: बाबा की जान, अब तो सारा वाकया जानती हो।

0: उस शिया की औलाद की जानिबदारी छोड़ दो।
1: आपके खानदान में सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं जनाब। आपका भतीजा अपनी मर्जी से मुझे सूली पर चढ़ा देता है, आपका बेटा अपनी मर्जी से पूरे काफले का खून बहा देता है, आपकी हुकूमत का जुनैद खुद सरी करता है और आप इससे अनजान हैं। बेटी,
2: मुबारक हो जनाब नईम। खुदा की कसम, जब से ये खबर सुनी है मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जनाब नईम, मेरी
3: हाथ मत लगाओ, बाहर निकलो, बाहर।
2: मेरी बात सुनिए जनाब नईम।
4: चाहिए, खुदा की कसम मैंने रोका था इसे।
3: बाहर निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ।
5: नायला, खुदा की कसम बाबा को बता देता तो वो यकीन नहीं करते। वो तुम्हारी इज्जत को बहाना बना देते कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। मेरे और रागिब के दरमियान दुश्मनी को बहाना बना देते तो मैं क्या करता? हाँ, आसानी से तुम्हें शाम पहुंचने देता।
6: नईम, तुम्हें कहां से पता चला? किसने कही तुम्हें ये बात? बताओ मुझे, खुद रागिब ने?
5: खुद तो नहीं,
6: मैंने कहा था। मेरी छोटी बहन ने शाम से एक दर्द भरा खत भेजा था कि रागिब की जानिब से एक तोहफा आने वाला है जो उसकी सौतन बन जाएगी। काफिला जब यहाँ से निकला तो नायला के अलावा कोई लड़की उसमें थी ही नहीं, तो ये बात झूठ निकली। ये इसका तरीका नहीं था। अगर मुंह खोलते, अगर कुछ बोलते तो बगैर किसी का खून बहे। मैं जानती हूँ, हम खुद ही शाम की तरफ रवाना हो जाते। नहीं,
5: शाम पहुँच जाती तो और भारी कीमत देनी पड़ती।
6: यजीद बिन माविया हमारा दामाद है, उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जानती थी कि अगर नायला के कदम दरबार में पड़ेंगे तो उसकी बाकी की जिंदगी बर्बादी में गुजर जाएगी। मैं कानिब गई थी और नहीं चाहती थी कि नायला की जिंदगी मेरी बहन की तरह बर्बाद हो जाए। नायला, यकीन करो या नहीं, नईम ने तुम्हें उस बदबख्त इंसान से बचाया है।
5: बस करो, अब बस करो, कोई हमारे पीछे नहीं आएगा।

0: नायला, मेरी बच्ची।
1: आज समझ में आया, अगर जरूरत पड़े तो नायला को भी जमा कर दोगे।
0: अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो अगले दिन के उगते सूरज को नहीं देख पाऊंगा मैं। इंसाफ करो, तुम मेरी जान हो।
1: हिलाल को निकाल दिया चूंकि तुम्हारे मंसूबे को पूरा होने नहीं दिया।
2: बूढ़े हो गए और तुम्हारा दिल नर्म पड़ गया। वो सवेरा होते ही सब कुछ भूल जाएगी।
0: हिलाल को लौटा दो।
2: हिलाल की जगह तिजारत खाने में।
0: ये मत सोचो कि जुनैद की बीवी का रोना और तलमा के बीच में पड़ना और तुम्हारी गैरत का फड़फड़ाना मेरा नजरिया तुम्हारे लिए बदल देगा। नहीं, नहीं। अगर जे सब लोगों के सामने तुम्हारा साथ दिया है, हजारों झूठ बोला कि तुम्हारी इज्जत बाकी रहे, अगर मेरी नजरों से तुम गिर चुके हो, बहुत गिर चुके हो, बहुत गिर चुके हो।

अब बस करो, नीचे उतरो बेटा, बैठो। नहीं बैठोगे नईम, पता है आज के दिन की खुशी में तुम्हारे लिए कलेजी भी है।

0: कुछ भी हो, कल से तुम्हारा काम धंधा दुगुना हो जाएगा। तो फिर ताकत भी तो होनी चाहिए ना।
1: गाय बकरी की कलेजी दे रही हो, इससे अनजान के राघव का मुकाबला करने के लिए शेर का कलेजा चाहिए था जो मेरे पास नहीं था। बहुत फैल गया ये वाकया।
0: कसम है तुमको, अपना खाना खाओ। अफसोस करने के लिए बहुत वक्त है, मगर आज की रात खुशी मनाने की रात है।
1: बस करो, मेरी खराब हालत देखते हुए तमाशा कर रही हो। रक्कासा हो या बंदर।
0: काश तुम्हारी याददाश्त काम करे और तुम्हें याद आए कि अगर आज इस तिजारत खाने के मनसब पर हो तो ये सब इसी रक्कासा और बंदर की देन है।
1: तो तुम्हारे ही मनसूबों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अपने आप को तुम्हारे हवाले करके बेवकूफी की है। तौबा, हजार मर्तबा तौबा। खुदाए इस औरत से तेरी बारगाह में पनाह चाहता हूँ कि हजारों फितना
0: तुम्हारे दामन में लिए फिरती है। कहा था कि जो मैं कह रही हूँ वही करो। तुम ना उसके अहल हो और ना ही देख सकते हो कि तलमा ने कितनी इज्जत और एतबार तुम्हारे लिए बनाया है।
1: मान जाऊं कि तुम मेरे लिए परेशान हो, हा? मेरे बाप के सामने हजार तरीकों से अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश की कि तुम खबर लेके आई थी। तुमने मुझे बताया कि क्या करना है। काश उसके आखिर में भी साथ देती।
0: अभी उतना भी तुम्हारे बेकार और गद्दी से ठुकराए गए बाप की तारीफों की मोहताज नहीं हुई हूँ कि तुम्हारे ये सारे ताने।
1: रुको, रुको। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे।
2: मामू जान।
0: सलाम। ये बाबू।
2: नानी ने मुर्गी को ज़िबाह कर दिया, कल रात के खाने में उसे खाया जाएगा।
0: कोई बात नहीं।
3: सलाम।
0: सलाम।
3: खुश आमदीद।
0: शुक्रिया।
3: आओ बेटा, सोने का वक्त हो गया है, चलो।

0: हिलाल, तुम कुत्ते का गोश्त खाते हो, मुर्दे का गोश्त खाते हो, शराब पीते हो। नहीं, चूंकि हमने तुम्हें सिखाया है कि हलाल कौन है और हराम कौन, मगर झूठ बोलने के हुक्म के बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं दावे से कहती हूँ नहीं बताया है, जरूर नहीं कहा होगा, चूंकि अगर कहा होता तो मेरी आंखों में देख के झूठ ना बोलते।
1: अब क्या हुआ है?
0: क्या हुआ है, क्या हुआ है? तमाम मोहल्ले वाले जानते हैं कि औहद ने सामिया के बेटे को लात मार के अपने घर से बाहर निकाला है, और तुम पूछते हो कि क्या हुआ है?

0: मुझे बोलने
1: नहीं की... मत बोलो, कुछ मत बोलो, जो बोलना था अब तक बोल चुके हो। 100 मर्तबा कहा हिलाल, 100 मर्तबा कहा कि मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, कहा मेरे घर का मर्द और कहा वो औहत। 100 मर्तबा कहा कि ये लालच छोड़ दो। मेरी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़े रहे।
0: खुदा की कसम झूठ का इरादा नहीं था, सिर्फ आपकी आंखों की खुशी देख के पूरी सच्चाई नहीं बताई।
1: काश सिफीन में होते और अपनी आंखों से देखते तुम कैसे अली के मुकाबले में तलवार चला रहा था और तुम्हारे बाप और उन जैसे लोगों का खून बहाया था। शायद तब तुम इस दर्जा उनकी तरफदारी ना करते।
0: कहां किसकी तरफदारी की है? ना कोई पूछताछ हुई, ना मुझे बाहर निकाला गया है। उसकी निशानी यह है कि उसकी बेटी को जंगी आदाब सिखा रहा हूं।
1: बाप कम था क्या जो अब बेटी भी बढ़ गई? उस लड़की के पास बाप नहीं है क्या जो उसे जंगी आदाब सिखाए? वाह हिलाल, बहुत खूब, अभी तक तुम्हें पहचान नहीं सकी हूं। बेटा जो भी कर रहे हो करो, बस इससे ज्यादा अपने शहीद बाप और भाई की इज्जत को मत डुबाओ।

0: काटने के बाद कहीं सफेद और बेरा ना निकल जाए।
1: ये सफेद कहाँ है मोहतरमा, मैं खून की तरह लाल अनार ही रखता हूँ।
0: हमारी बात कल रात ही हुई थी, ना आज और बाजार के दरमियान।
2: रात के अंधेरे में हिलाल मेरे पीछे आ गया था। खुदा की कसम, वो शोर शराबे और बेइज्जती जो मैंने की थी, अब अपने साए से भी डर लगता है। सोचा यहाँ भीड़ में अच्छा रहेगा। खानम, मुझे बहुत तकलीफ होने लगी है। इतनी ख्वातीन में से जिनके शोहर मर गए हैं, मुझे क्यों चुना है और ऐसा जता रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हैं।
0: तुम्हें यकीन है कि सिर्फ तुम्ही हो? बहुतों का हाथ हक़-उन-नास के उनवान से जिनके शोहर ना हो पकड़ रखा है, उन्हीं में से तुम भी हो।
2: यही अनार, मैंने फल थोड़ी मांगा है।
0: ठीक है, अगर तकलीफ है तो मत उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
2: बेटा, ये सब इकट्ठा करो, जल्दी करो।
0: और एक बात समझ लो, मेरी नेकी और एहसान को मंसूबा बंदी का नाम मत दो तुम। तुम्हारे शौहर की वजह से तुम लोगों की जान को भी खतरा हो गया है। मुझे पसंद नहीं किसी मर्द के गुनाहों की सजा उसकी बीवी और बच्चे को मिले। उसका नाम बदनाम हो चुका है, समझ लो तुम। तुम्हारा शाम में कोई रिश्तेदार
2: नहीं
0: है? तो फिर ये शाम जाने का क्या माजरा है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे शोहर की जिद तुम लोगों को ले जाने के लिए उस हद तक पहुँच गई थी कि राकिब ने उसे डांट दिया था।
2: कुछ नहीं, बस बानो नायला के पास शाम में रहना चाहती थी ताकि उसकी खिदमत कर सके, बस।
0: रह जाते, नायला वहाँ रहने के लिए गई थी क्या? निकाह होना था और वापस आना था, वैसे भी रुकने की तो कोई बात ही नहीं थी ना।
3: ये काफी सस्ता है।
0: और फिर भी वो नहीं मानी?
2: नहीं, मतलब अपने में सोचा कि अगर ऐसा हो गया और बानो रह गई तो हम भी वहीं रुक जाते।
0: मुझसे झूठ मत बोल औरत।
2: गुमान लगाया था, अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी।
0: अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि कौन पागल गुमान के सहारे घर बार छोड़कर जाता है? हाँ,
2: खुदा की कसम यही था खानम।
0: तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी मैं, झूठ तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। बताओ कहाँ से सुना था कि नायला वहाँ रहने वाली है?
2: उसने कहा था, जनाब राकिब ने खुद ही मेरे शोहर से कहा था।
0: जैसे अपनी नौकर को कोने में ले जाकर कहा होगा कि अपनी बीवी को यजीद के महल में छोड़ने का इरादा।

0: ज्यादा रखता है। हाँ
1: नहीं, मतलब एक रात अवहद रागिब के साथ बातें कर रहे थे। बातों के दरमियान जुनैद ने सुना था कि शायद बानो अमीरुल मोमिनीन की बीवी बनने वाली है और हमेशा के लिए यजीद के दरबार में रहने वाली है।
0: अहद?
1: जी हाँ। फिर जुनैद ने कहा कि कूफे में उसके भाई याद आते हैं, हम भी शाम चले जाएं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि इतनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा।
2: एक नौकर उस खानदान की बेटी की जान लेना चाहता है और उसकी बीवी नामूस बेचने और झूठ बोलने का इल्जाम उस खानदान पे लगाती है। इस मुंह से बहुत बुरी बातें निकल गई, तौबा कर लो, चूंकि इल्जाम लगाने की सजा जहन्नुम है।
3: Every child deserves a place where they feel safe, secure, valued, inspired, and loved. Welcome to Al Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence, and compassion. Give your child a place to belong, learn, and flourish. Admissions are now open at Al Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.

0: क्या यही रफाकत का तरीका होता है मेरे भाई? हमें तो हम सफर रहना था ना। मुझे छोड़कर ज्यादा सफर बांध लिया और अकेले ही चले गए।
1: आए खुदाया, काश मैं आपकी जगह मर जाता। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कबीला किन्दा को यतीम कर गए। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अपनी शरण काट देता और हम एक साथ मट्टी में मिल जाते।
2: ज्ञान का कत्ल तुम्हारे सर है बिन शुबैत। अगर मर्द हो तो अपने खता का इकरार करो।

0: वो उम्र अपनी पाक नियत को साबित करने में कामयाब हो गया।
1: आप मुझसे कह रहे हैं अमीर?
0: नहीं, अपनी बदरू से बात कर रहा हूं।
2: भाइयों, मैं आमर इब्ने शुमैत तुम लोगों के सामने इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने अबू उमरा के बारे में गलती की है, बल्कि शायद खयानत की है। खयानत।
1: आप कैसी इंकसारी दिखा रहे हैं अमीर? कैसी खता, कौन सी खयानत? ये तो फितरी बात है, जंग में होता ही है, एक मारता है एक मारा जाता है। हमारा मुकद्दर वो चीज है जिससे वो रकम करता है।
2: अगर अबू उमरा और उसके साथी घोड़ों पर बैठ के मैदान में जाते तो हर किस जंग का अंजाम ये न होता। अबू उमरा का खून मेरे जिम्मे कर्ज है जो अदा करना होगा।
1: अहमद मेरे भाई, देखो ये बातें फौज का शिराजा बिखेर के रख देंगी। खुदा के लिए अपने एहसासात को लगाम दो, अभी तो हम सिर्फ इब्तिदा ही में हैं। हमारी असल जंग अभी तो कल से शुरू होनी है।
3: अब्दुल रहमान, मौत इंसान का मुकद्दर है, अपने आप को संभालो नौजवान। मलकुल मौत का खुदा की किसी भी मखलूक से लिहाज का रिश्ता नहीं है, यहां तक कि उसके रसूल खातिम से भी नहीं। जहे नसीब तुम्हारे बाप के कि वो अल्लाह के दीदार को पहुंचा है, तुम्हें तो उनकी खुशनसीबी पे नाज होना चाहिए। तुम्हारे मरहूम वालिद और दादा दोनों ही अरब के मशहूर तरीन अफराद में से थे, और कबीला किंदा के शेख भी, जो कि एक मुजाहिद और तवाना कबीला है। ये कोशिश करो कि अपने खानदान के नाम और बुजुर्गों के लिए आजादारी करो। आज से हम तुम्हें कबीला किंदे का बुजुर्ग और शेख जानते हैं, और इस सोग में हम आपके गम में शरीक हैं।
4: आपकी हमदर्दी का इजहार हमारे लिए फखर का बाइस है अमीर, मगर मेरे और

0: कोई बात नहीं, मुर्दे की वसीयत पर अमल करना वाजिब है। पढ़ा दे, शबस ही नमाज पढ़ा दे, जाइए।
1: कल मैं खुद मैदान में जाऊंगा, या तो मारा जाऊंगा या फिर अबू उमरा के खून का बदला ले लूंगा।
2: गुस्ताखी माफ अमीर, आपको रुककर हमारी फरमा नवाई करनी होगी। खुदा ना खास्ता अगर हम हरूला में हार गए तो कयाम का फातिहा हो जाएगा। क्यान जिस चीज को पाने के लिए बेचैन था उसे पा लिया। खुदा उसे हमारे पेशवा मौला अली के साथ नशूर करे। अभी हम जिंदा हैं अमीर, हमारी जिम्मेदारी दुश्मन से मुकाबला करना और आपकी जिम्मेदारी रहनुमाई करना है।
1: काश मैं अबू उमरा के बारे में शक नहीं करता बिन कामिल।
2: अमीर आपके शक की जड़ मुनाफिकों से मशवरा करना है। मैं यकीन से कह सकता हूँ अलब और अजम का निफाक कोई मानी नहीं रखता। जब कभी आप कोई ऐसी चीज देखें तो फौरन समझ जाइए या तो दुश्मन की चाल है या अरब के मुनाफिकों का वसवसा है।
3: आपकी अरब के मुतासिब मुनाफिकों से मुराद कौन लोग हैं?
2: रहने दीजिए शेख, रहने दीजिए, मैं किसी पर

0: तुम्हारी इब्ने हुर से अहमकाना दुश्मनी का राज क्या है?
1: मुझे नहीं पता था कि मैं अपने भाई की नजरों में इतना हकीर हूँ कि वो मुझे इब्ने हुर जैसे एक चीले का दूध समझता है।
0: फिर क्यों जरा जरा सी बात पर एक दूसरे का दामन नोचने लग जाते हो?
1: भैया, ये शख्स मशकूक है, मुमकिन है कि मुख्तार का जासूस हो। बईद नहीं कि उसकी मुख्तार से मुखालफत और तमाम तर लड़ाइयाँ मुख्तार की तदबीर हो, ताकि हम उस पर एतमाद करके अपने खैमे हुक्मरानी में जगह दे दें।
2: इब्ने हुर अगरचे मुख्तार का जासूस ही क्यों ना हो, हमारे लिए कारसाज है लड़के, बेहतर यही होगा हम उसके साथ मिलकर रहें।
1: जनाब मोहल्लब, आपको उसकी जरूरत है मान लिया, मगर उसे हमारे राजदाराना इजलास में क्यों रखा जाता है?
2: जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे मख्फियाना इजलास में सिर्फ मैं और अमीर ही होते हैं, यहाँ तक कि आप भी नहीं होते।
1: ये भी मेरे दिल पर एक दाग है, हैफ है कि अपने बड़े भाई के सामने मेरी गर्दन झुकी हुई है।
0: जाफर भाई, अगर तुम कहो तो हम अपनी जगह बदल लें।
1: मैं ऐसी जसारत का इरादा नहीं रखता था भाई।
0: तो फिर अपने जज्बात को काबू में रखो, हमारा मकसद हुकूमत बनी जुबैर को बर्पा करना है, उस हुकूमत को जिसके खलीफा हमारे बड़े भाई हैं।
1: जी अमीर।
0: तुम्हारा खेल देखने वाला था मोहल्लब, अब उमरा भी मारा गया बगैर इसके कि हमारे लश्कर को कोई नुकसान पहुंचे।
2: मजे उड़ाओ, अभी सिर्फ मजे उड़ाओ। आखिर मैं क्या करूं कि शबस मेरी चाल को समझ चुका है।
0: जो अजदहा मैं तुम में देख रहा हूं, शबस भी उसके लिए एक छोटा सा निवाला है।
2: उसे खेमे में बुलाओ, अदब और मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़े हो, उससे ऐसे बात करो कि वो बआसानी अपने दिल की बात कर जाए।

0: तो आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी।
1: तुम्हारी तलवार की क्या कीमत है?
0: हुक्म अमारत बसरा, मगर हजरत खलीफा के हाथों और उनकी मोहर से लिखा हुआ होना चाहिए।

0: खुदा बरकत दे शेख सबस, अच्छा सौदा किया आपने, मुबारक हो।
1: वो क्यों?
0: रहने दीजिए, आप जैसे एक बुजुर्ग की नजरों में मुझ जैसे अफराद गुमनाम ही होंगे ना।
1: बेटा मेरी उम्र इतनी नहीं कि एक नौजवान के तंज और ताने बर्दाश्त कर सकूं। कनायाबाजी से गुफ्तगू मत करो, मुझे आपकी पहचान होनी चाहिए।
0: मैं हूँ जनाब शबस, उबैदुल्ला इब्ने हुर।
1: हुर? मैं एक हुर को जानता हूँ जो यजीद की फौज का सरदार था। पहले उसने हुसैन का रास्ता रोका और फिर उस पर फिदा हो गया। तुम उसके बेटे हो?
0: जी नहीं, मैं हुर का बेटा हूँ, मगर हुर इब्ने यजीद रियाही का बेटा नहीं। अगर मेरे बाप का चर्चा उसकी तरह होता तो मैं अभी खलीफा के लश्कर का सिपा सालार होता।
1: हाँ, आजकल मनसब फरोशी का बाजार खूब गर्म है। मेरी मानो तो अपनी तवानाई पर तकिया करो जिसकी बका ज्यादा हुआ करती है।
0: मैं वही हूँ जिसने मुख्तार के खिलाफ खड़ा होकर उसकी हुकूमत की बुनियाद हिला डाली।
1: अच्छा, तो जिस बागी नौजवान ने मुख्तार को चोट पहुंचाई वो आप हैं? आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे।
0: बिला मुबालिगा मैं आपकी चालाकी की दाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सियासतबाजी में आप मेरे उस्ताद हो।
1: गलती कर रहे हो लड़के, अगर मैं कोई मंझा हुआ सियासतदान होता तो यहाँ ना होता।
0: इनके सारी से काम ले रहे हैं शेख, अगर आप भी कच्चे सियासतदान ना होते तो आज हम आपकी मौत के चने खा रहे होते। मरहूम बिन अशद से गिंदी अगर आपकी बातों पे चलता तो आज जिंदा होता।
1: सभी को मरना है, मुझसे क्या चाहते हो?
0: एक तलवार की कीमत बताइए।
1: वो तलवार है कैसी?
0: ऐसी तलवार जो कल तक मुख्तार की हामी थी और कातिलाने हुसैन को जख्मी करती रही, आज जुबैर के बेटे की हामी है ताकि मुख्तार का सर कलम कर सके।
1: ये तो बड़ी अजीब सी तलवार है। ऐसी तलवार तो कल को जुबैर के बेटे की शहरत काट सकती है और साथ ही तलवार वाले के सीने को भी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तलवार को तोड़ देता। अगर सौदा ही करना है तो अपने खून का सौदा करो, अपनी तलवार का नहीं।
0: अगर मेरे खून का सौदा हो जाए तो मेरा खून बहा मेरे किस काम का?
1: खून बहा हमेशा जान की कीमत नहीं होता नौजवान। सिर्फ चंद खून के खतरों और हल्की सी खराश, इसके बदले कूफे के सरकारी सिपाहियों के सरदार बन सकते हो। ये मशगला रोटी पानी अच्छी चला देता है और आपके अखलाक के साथ भी साजगार है।

0: कहाँ जा रहे चाचा जान?
1: चाचा जान, मैं तुम्हारा चाचा जान हूँ
0: क्या? नहीं है,
1: पता नहीं हूँ क्या।
2: एक आध दिन पहले तक तो आप चाचा ही थे। शायद मेरे बाप की मौत के साथ साथ आपकी अख़ुव्वत का सीगा भी टूट गया है।
1: जब तुम्हारा बाप मेरा भाई था और मर चुका है,

0: तो फिर मेरी कमर भी टूट गई है।
1: चाचा जान, हजियान भूलने की बीमारी आपके लिए शर्मनाक है। सबको ये लगता है कि आपने डर के मारे अपने आप को दीवाना बना लिया है।
2: लश्कर वाले आपका मजाक बना रहे हैं।
0: तुम पागल हो गए हो? लश्कर कहाँ है लश्कर?
1: होश में आओ बुज़दिल।
0: मैं होश में तो हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं नींद में तो नहीं हूँ।
2: जनाबे बिन हज्जाज, आप कबीले जुबैदी के बड़े हैं, जो कि कबीला किंडर के साथ मिला हुआ है। इस माले खोलियत से आप दोनों कबीलों को बदनाम कर रहे हैं।
0: बिन हज्जाज, ये नाम काफी आशना लग रहा है मुझे। बिन हज्जाज, हाँ पहचान गया हूँ। वो एक ऐसा शख्स था जिसमें ना तो जंगजुओं की शुजाअत थी और ना ही अमीराना सियासत थी। जैसे ही जंग हो जाती थी वो सबसे पहले तलवार निकाल लेता था। कैसा गधा था वो?

0: इसका गला घोटा तुम लोगों ने या चीड़ फाड़ की है?
1: इसके मुंह को लाश हो दरिंदे नोच गए अमीर।
0: बड़ी हौलनाक सजा है।
1: माले खोलिया का अर्जा था इसे।
0: थोड़ा सा जालमाना था यह सब,
1: और कोई चारा नहीं था अमीर। मुझे डर था कि यह हुकूमत के राजों को फाश ना कर दे। मैंने खलीफा की हुकूमत की इज्जत की परवाह में ऐसा किया। बाज़ औक़ात किसी शरई चीज को बचाने के लिए जुल्म करना पड़ता।
0: मैं तुम्हारी होशियारी और तलवार का मान रख लेता हूँ अब्दुर्रहमान। अगर हुकूमत बनी जुबैर के बाएं बाजू बनना चाहते हो तो तुम्हें बिन कामिल शाकरी की कमर भी तोड़नी होगी।
2: समझे?

0: उसे पहचानते हो?
1: जी अमीर, इनकामिल शाकरी है, कूफे के सिपाहियों का सरदार है।
0: दरअस मुख्तार के बाजुओं में से एक है ये, अगर आज इस बाजू को काट दो तो अच्छा इनाम होगा।
1: जी अमीर।

0: तुम काफी जख्मी हो गए हो अहमद, हमें पीछे हट जाना चाहिए।
1: ये जख्म एक दोस्त ने मुझे दिया है, दुश्मन ने नहीं।
0: हमारी दोस्ती की कसम, मेरी नीयत खैर ही थी।
1: शैतान खैर ख्वाही के धोखे में रख कर ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है, ऐसे जाल में फंसा देता है जिसे निजात की रस्सी समझता है। इंसान शैतान की राह पर चल पड़ता है और समान अनजाने में उसकी मर्जी के मुताबिक चल जाता है।
0: आह, काश मैं गुंगा हो जाता और अपने अफकार को बयान न करता।
1: खुदा हमारे दिलों की तारीखियों को खत्म करे। जाओ एतिकाफ और तौबा करो, शायद बरोज हश निजात पा जाओ। तुमने अपने बेजा शैतानी वसवसों से लश्कर और क़याम की कमर तोड़ दी है। खुदा ही खैर करे तुम्हारी।
0: तमाम मक्तूलीन का कत्ल मेरे जिम्मे, अब ठीक है अहमद मेरे भाई, हमें पीछे हटना होगा ताकि बफजले खुदा सुबेरियों की कमर तोड़ डाले।
2: फौज का शिराजा तो उसी दिन बिखर गया था जिस दिन ईरानियों को घोड़ों से उतर जाने पर मजबूर किया गया।
3: इस फितने के बाइस और बानी पर लानत हो, इससे ज्यादा हरूरा में रुकना शर्मिंदगी का बाइस है। हम सबको मर जाना होगा ताकि उनको यकीन हो जाए कि हम हार चुके हैं। आखिर क्यों रुकने पर मुसर है खुदा जाने।

0: क्या ये खबर सच्ची है इब्न हुर?
1: कौन सी खबर अमीर?
0: मुख्तार हरूरा आ पहुंचा है?
1: जी हाँ, आ चुका है
0: अपने मजीद लश्कर के साथ।
1: कौन सा मजीद लश्कर?
0: तादाद, उसकी फौज की तादाद कितनी है?
1: मुख्तार का रद्दअमल मेरे लिए उसकी फौज की तादाद से ज्यादा दिलकश था।
0: कैसा रद्दअमल?
1: मुख्तार अपनी लश्करगाह को बर्खास्त करने में मसरूफ है, गालिबन वो मजार की तरफ जाना चाहता है, अभी मुंतकिल होने के कामों में मसरूफ है।
0: मजार?
1: जी अमीर, मजार एक मुश्किल से गुजरने वाली जगह है जो कि झाड़ियों, कीचड़ और पानी से भरपूर है।
0: मोहल्लब, अब मुंतकिल होने का क्या मकसद है?
2: इसका मतलब ये है कि मुख्तार समझ चुका है कि हरूरा में हमसे निमटने में नाकाम रहेगा। वो मजार की तरफ जा रहा है ताकि झाड़ियों, कीचड़ और पानी जैसी रुकावटों से फायदा उठा सके। नहायत अकलमंदी वाला फैसला है।
0: हम क्या करें अब?
2: मजबूरन मजार जाकर उसका मुकाबला करना होगा। हुक्म दीजिए कि लश्कर को मजार की जानिब बढ़ाया जाए।
0: जाफर, खीमों और साजो सामान को समेटो, हम मजार की तरफ बढ़ेंगे।
3: जी अमीर। कहाँ चले गए?
2: वो गए हैं मुख्तार की मजीद फौज के मुतालिक शबस से गुफ्तगू करने।
0: तुमने सुना मुख्तार ने मजार का इरादा कर लिया है?
4: मजार?
0: जी हाँ, मजार। वो हमें दलदल में फंसाना चाहता है।
4: मैंने पहले ही अर्ज किया था अमीर, मुख्तार के पास बड़े अजीबोगरीब हरबे मौजूद हैं। उसके हरूरा में शिकस्त खा जाने पर भी शक कीजिए अमीर, बईद नहीं कि उसने जानबूझकर ये शिकस्त कबूल की हो।
0: वाकई वो हरूरा में अपने तीन करीब तरीन साथियों को गवा चुका है।
4: खिलाफत का लिबास पहनने के लिए ये कोई बड़ी कीमत नहीं। मुख्तार हर लिहाज से एक मजा हुआ सियासतदान है। बिल्कुल आप और आपके बड़े भाई हजरत खलीफा की तरह। अगर आपको खिलाफत का लिबास हासिल करने के लिए मेरे और मोहल्लब जैसे अफराद को कत्ल करना पड़े तो क्या नहीं करेंगे?
0: हमसे दूरी मत अख्तियार कीजिए जनाब शबस, हमें आपके मशवरे की जरूरत है। हाँ, आपकी तलवार की कीमत के बारे में हमने खलीफा से बात कर ली है। बसरा की हुकूमत का हुक्म बहुत जल्द आपके हाथ में होगा।
4: मैं ममनून हूँ अमीर।
5: मरहूम के अंकल के लश्कर में जो ईरानी हजरात थे उनमें से सिर्फ एक तिहाई रह गई है, जिनमें से ज्यादातर जख्मी और नीम मुर्दा है। बहुत ही हौलनाक दिन था अमीर। खुदा किसी को ऐसे दिन ना दिखाए।
1: अमीर,
6: बेशक ये जाल मोहल्लब की एक चाल होगी और यकीनन बिन शुमैत इस चाल से वाकिफ नहीं था। मुझे तो हैरत है कि कियान और बिन कामिल क्यों किसी गलत हुक्म को मान गए।
5: अमर और कियान के माबैन बहस भी हुई थी। अमर बज़िद और गुस्से में भी कियान ने मजबूरन इताअत की।
6: कैसा जबर, हर गलत हुक्म के लिए नाफरमानी करना ही फर्ज है।
7: बिन वहाब कहाँ है? मुमकिन है महूम बिन शुमैत के चोग में अपने खेमे में मुतकिफ हो गया हो।
6: जी हाँ, बिन वहाब और बिन शुमैत एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे, यकीनन उसे ये सब पता होगा कि असल कहानी क्या थी।
7: मुझे इतना याद है कि इसी खेमे के अंदर कियान के जनाजे पर उसके और बिन कामिल के माबैन कुछ गुफ्तगू हो रही थी।
6: किस बात पर?
7: किस बात पर? हाँ, मुतासिब मुनाफिकों से मशवरा करने के मौजू पर।
8: मेरे ख्याल से बिन वहाब को कुछ ऐसी बातें पता होंगी जिससे हमें फितने की जड़ का पता लग सकता है।
4: ऐसे हालात में गले मुर्दे उखाड़ना लश्कर के हक में ठीक नहीं होगा। फिलहाल क्या करें?
6: मेरी राय तो यह है कि लश्कर की मरम्मत होनी चाहिए। इस काम के लिए कम से कम एक महीना चाहिए।
4: साहिब, तुम्हारी क्या राय है?
8: हो सकता है आपको मेरी राय अच्छी ना लगे अमीर।
4: अभी तक मैंने तुम्हारी राय सुनी ही नहीं। हम इसलिए जमा हैं कि इन हालात से निकलने की कोई राह निकाल सकें।

0: मेरी राय यह है कि हम पीछे हट जाएं। बेहतर यह होगा कि हम जंग को कुफे के अंदर ही जाने ले जाएं।
1: हमारे सफेद बाल और सफेद दिल वाले सरदार की क्या राय है?
2: मैं आज भी उसी ऐदो बहमा पर कायम हूं जो मैंने एक शबे जुम्मा को अपने मौला अली से किया था। खुदा की कसम मैं बनी जुबैर के नाम और फरारे जंग दोनों से ही बेजार हूं। तदबीर साहेब मुमकिन है कि एक अच्छी तदबीर हो और यकीनन एक फायदा मंद तदबीर है, मगर मेरी राय खड़े होकर लड़ना है अमीर।

0: नहदी क्या करने वाला है?
1: अगर मसलियत होती तो अमीर मुख्तार नहदी की मामूरियत के बारे में हमसे मशवरा जरूर करते।
0: जंग के तदबीरों के बारे में अमीर की खसूसियात को अब तक मैं जरा भी समझ नहीं पाया।
2: साथ और तुम सईद मोहल्लब और उसके आदमियों को एक टेक देखते रहना। जब तक मोहल्लब कोई कदम नहीं उठाता तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। और तुम मेहरान लश्कर गांव में ही रहो और जख्मियों के इलाज पर नजारत करते रहो।
3: जी अमीर।

0: कपड़ियों के चप्पे चप्पे पर एक जाल है। हमारे सिपाहियों को गोरों दर गोरों मारा जा रहा है।
1: तो तुम क्यों जिंदा रहेगा अहमद? फौजों को पीछे बुलाओ, जाओ
0: जी अमीर।

0: तुम वही बेतुके नहीं हो जिसे नहादी कहते हैं?
1: क्यों नहीं, हाँ मैं ही हूँ। हैरत है कि तुम अपने बिल से बाहर कैसे आ गए।
0: तुम अपनी जान से शेर हो गए हो गुड्डे। तुम जैसों के लिए तो मौत शादी की तरह है। इसे बुढ़ापे की अजियतों से आजाद कर दो।

ताज्जुब है, ये लोग जादू करते हैं या दुआ और दवा से काम लेते हैं? इतनी लंबी उम्र और जवानों की सी ताकत रखते हैं।

जिसमें शह जिसमें नबी है खूने शह खूने नबी, जिसमें शह जिसमें नबी है खूने शह खूने नबी। देख जरा कातिल ये पहचान, जेर खंजर कौन है।

के बराबर कौन है। कैदियों वाले पयंबर है के खुलता ही नहीं, कैदियों वाले पयंबर है के खुलता ही नहीं, इनमें फिजा कौन है, जहरा की दुखतर कौन है।

आके सकीना को याद करती होगी और बहन होता होगा, बेटा सकीना हम वतन पहुंच गए, आप शाम के जिंदा। अला लअनतुल्लाह अल-क़ौमिल ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू यमुनक़लबी यनक़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिहि मतम हुसैन।

और ज़ाहिर है कि ज़्यादातर नेमतों को हम नहीं जानते, लुत्फ़ खुदा है कि उसने हमारी जहालत, नादानी, गफलत, हत्ता कुफरानी नेमत के बावजूद बाज़ औक़ात नेमतों को नहीं छीना, नेमतों को जारी व सारी रखा। अब यह है कि हमें इतना अपने ऊपर मुतमईन नहीं होना चाहिए कि ये जो नेमतें चल रही हैं हत्ता गफलत के बावजूद ये हमेशा बाकी रहेंगी, ये छिन भी सकती हैं। तो ज़रूरी है कि इंसान शुक्र बजा लाए, ज़बान से भी, अमल से भी। अल्लाह की तरफ से ये सआदत नसीब हो और इंशाअल्लाह ईमान की नेमत, अहले बैत की मोहब्बत की नेमत, कुरान करीम की मारिफत की नेमत, इन तमाम नेमतों का शुक्र बजा लाने के लिए, जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी तमाम नस्लों में और बढ़ती रहे, ज़्यादा होती रहे। दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद खुदा मुसान ने जब कुरान करीम में फरमाया कि तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, तो ये बात बहुत वाज़ह है कि खुदा खुद अपनी खिलकत के ऊपर गोया फ़ख्र फरमा रहा है कि कितनी अच्छी खिलकत है। तो अब तारीफ़ करने वाला जो भी होता है उसके पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए कि जिस चीज़ की तारीफ़ की गई है उसकी तारीफ़ क्यों की है। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं खड़ा हूँ किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग देख कर के, अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो मेरा तो कोई भरोसा नहीं, मुझे आर्ट और पेंटिंग से कोई ना लगाव है ना मेरा कोई ज़ौक़ है। तो मुझे शायद फ्रेम अच्छा लग रहा हो तो मैं कह दूँ भाई ये बहुत अच्छी है, चूँकि फ्रेम अच्छा था। तो अब कोई ये कहे कि आपको क्या अच्छा लगा, तो मैं बात टालने के लिए कह दूँगा नहीं नहीं बहुत अच्छी लगी है, क्या पता भाई मैंने क्यों तारीफ़ की। लेकिन अगर खुदा कह रहा है इंसान के लिए, क्या देख रहा है, क्या है इंसान के अंदर, और चलो जो है इंसान के अंदर वो तो है, मैं भी तो इंसान हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर भी कोई चीज़ है, मैंने मानी या ना मानी, उस पर तवज्जो दी या नहीं दी, कुछ है तो सही। अब वो जो कुछ है वो क्या है, यहाँ समझ लें कि आपके सामने मेरे सामने एक पूरा पिंडोरा खुला हुआ है कि आपने ढक्कन उठाया और अब यहाँ पर पूरी दुनिया बसी हुई है कि भाई वो क्या है जो खुदा तआला हमारे अंदर अच्छा देख रहा है, और वो कैसे, उसके ऊपर मेहनत कैसे होगी, उसके ऊपर काम कैसे होगा। तो ये जो दीन का आना है, ज़ाहिर है कि दीन एक निज़ाम हयात है और दुनिया की कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी जिसके लिए दीन ना हो, लेकिन दीन सिर्फ दुनिया की मुश्किल के लिए आए, और ये इतनी ढेर सारी कुर्बानियाँ लाखों लोगों की और पाकीज़ा तरीन इंसानों की कुर्बानियाँ, ये किस बात के लिए हो, ये इस बात के लिए हो कि यहाँ पे लोगों ने 50-60 साल ज़िंदगी गुजारनी है वो अच्छी गुजर जाए, इसके लिए नहीं होनी चाहिए। इसका हदफ इससे कहीं ज़्यादा अजीमुशान होना चाहिए। तो मामला ये नहीं है कि हम लोग जो दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं 50-60 साल ज़िंदगी गुजारनी है, इसमें हमारा पेट भर जाए, इसमें हमें कपड़े मिल जाएँ, इसमें हमें साया मिल जाए। अगर सिर्फ ये होता तो मेरा नहीं ख्याल इसकी शान और शौकत इतनी होती कि इसके लिए अंबिया तशरीफ़ ला रहे हों, इसकी इतनी वैल्यू भी नहीं होती। तो वैल्यू किस चीज़ की है, वैल्यू इस बात की है कि रहना इन लोगों ने 50-60 साल यहाँ पर है, लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है कि इनका पेट कैसे भरेगा, वो खाली भी रहे तो इतना मसला नहीं है, सारा मसला ये है कि इनकी रूह की तामीर कैसे होगी। क्यों, पेट तो 50-60 साल की कहानी है, लेकिन रूह का मसला अबदी मसला है। तो अब वो जो प्लानर होता है, वो प्लानर सबसे पहले ये देखता है प्लानिंग है कितने टाइम की, उसके हिसाब से प्लानिंग करता है। तो अगर ये प्लानिंग 50-60 साल की हो तो उसकी वर्थ इतनी नहीं है, लेकिन प्लानिंग 50-60 साल की नहीं है, प्लानिंग अबदी ज़िंदगी की है, उसकी वर्थ है, उसकी इतनी वर्थ है कि इतने अम्बिया तशरीफ लाएँ, इतनी जानें दी जाएँ, उसकी इतनी इतनी कुर्बानियाँ हों। अब खुदा न करे ना रहे, हाँ ये हो सकता है, लेकिन सवाल फिर ये होगा कि वो नमाज ही क़यामत के दिन पकड़ लेगी कि मैं आई इसलिए थी कि तुम्हारे ये जो चवन्नी अठन्नी के मसाइल थे इनको हल करूँ। तो ये जो ओरिएंटेशन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ दुनिया के मसाइल भी हैं, उनको हल

मेडिसिन के सिस्टम के अंदर रहने वाले बंदे की, जो स्पेशलाइज्ड भी है, उसके इस एतराफ को हम सुन रहे हैं। तो अब आप बाकी अंदाजा लगा लो, बाकी हो क्या रहा है। अच्छा, एक और मुश्किल है वो ये कि नफ्सियाती तौर पर उलझे हुए केसेस की तादाद गोया मल्टीप्लाई हो जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। आप बच्चों को देखो, परेशान हो जाएंगे आप, बाद औकात परेशानी आ जाती है। मैं स्कूल में पढ़ाता था, एक जगह स्कूल में पढ़ाते हुए मुझे मेरे ख्याल में 2 या 3 साल हुए थे। अच्छा, वो स्कूल ऐसा था कि उसमें ये बाहर से आने वाले बच्चे स्कूल की शोहरत की वजह से वहाँ कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते थे। तो मैं एक दफ़ा खड़ा था, मेरे ख्याल में उस वक्त मुझे 2-2.5 साल हुए होंगे। तो मैं बच्चों के रजिस्टर्स चेक कर रहा था, तो एक बच्चा मेरे पास चेक कराने आया, तो मैंने उसको देखा। देखते ही मैंने उससे कहा, अमरीका से आयो? कहने लगा, सर आपको कैसे पता चल गया? मैंने कहा, तो वो हमारी बात कहीं मशहूर हो गई। तो हमारे एक, मैंने कहा भाई उसका जिस्म टिक ही नहीं रहा कहीं, ये जो वेस्ट से आ रहे हैं बच्चे, इनकी एक खास मुसीबत है, अटेंशन है ही नहीं इनके अंदर, इनके अंदर इसका डिसऑर्डर है। तो मैं तो बहुत कम देखता हूं कि कोई वेस्ट से बच्चा आया हो और इसमें डिसऑर्डर ना हो। ये बात मैं जो आपको सुना रहा हूं ना, ये 97-98 की है। अब मैं अपने मोहल्ले और खानदान और हमसाये के बच्चों में कम से कम 40-50% में ये डिसऑर्डर देख रहा हूं, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये डिसऑर्डर कहां से आ रहा है? कुछ तो ये डिसऑर्डर, मेरे ख्याल में, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ तो ये डिसऑर्डर आ रहा है खाने पीने से। जो कुछ हम खा पी रहे हैं ये डिसऑर्डर वहां से आ रहा है, और दूसरा डिसऑर्डर आ रहा है स्क्रीन से। ये जो बच्चे हमारे स्क्रीन के ऊपर जम गए और वहां से निकल भी नहीं पाया हुआ है, यही ऊपर भी जा रहा है, क्योंकि अब ये बच्चे बड़े होने वाले। जो बच्चे हम 98 में देख रहे थे, अब वो कितनी उम्र का होगा? तो जाहिर है कि वो बड़ा तो हो रहा है, वो 20 साल से, तो 24 साल तो अब उसको हो रहा है, मिसाल के तौर पर कितने। तो अजीजाने मोहतरम, ये होगा क्या हमारी सोसाइटी का? अब कुछ अरसे की बात नाउज बिल्लाह ताला क्या होने वाला है? ये जो डिसऑर्डर है ये वायलेंस पे लेके जाता है, ये हार्डली टीन एज तक कंट्रोलेबल है, उसके बाद वायलेंट है ये, और किसी को समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या ये। अब इसके मुकाबले में हमारे पास रास्ते क्या हैं? तो एक रास्ता तो ये है कि भाई वो जो आपने इंसान को माइनस रूह सोचना शुरू किया था, सारी कहानी आपकी वहां से शुरू हुई है। इंसान की रूह को मत माइनस करो, ये इंसान रूह के साथ है, इसका पूरा एक सिस्टम है। आप माइनस करोगे ये होगा, और यकीन मानिए ये तकरीबन समझ लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जो ह्यूमैनिटी हमारी डेवलप हुई है, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, तबाह कर दिया सब। उससे पहले भी काम था लेकिन इतना बुरा नहीं था, उसके बाद तो जो कुछ हुआ मुसीबत हो गई हमारे लिए। तो अब वक्त क्या है? वक्त ये है कि भाई ये जो फंडामेंटल्स हैं, इसको हम इंसान शनासी इसीलिए कह रहे हैं, ये इंसान शनासी है, ये इंसान की हकीकतें हैं, इनके ऊपर तवज्जो दो ताकि तुम्हें और हमें इंसान समझ में आए। इंसान समझ में आएगा तो अगली बात समझ में आएगी कि इसका मर्ज क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज कैसे होना है। और अगर यही समझ में नहीं आया तो फिर ठीक है, वो तुम्हारा एक इंसान खोखला इंसान है जो वहां से आ रहा है, उसको लेके देख लो, उसका रिजल्ट देख लो। कितने पुरसुकून सोसाइटीज के ड्रामे सुना सुना के कान पका दिए, अब देख लो हर रोज गन वायलेंस, हर रोज। अब जो कैनेडा में स्टैबिंग हो गई, कितने 12-13 बंदे 10 बंदे कहां मार दिए चंद घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर चाकू से मारे। ये वायलेंस क्यों है? ये भूखे हैं ये लोग, इनकी तनख्वाहें कम है, क्या मुश्किल है इन लोगों के साथ? ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइफ का, मकसद ही नहीं है कोई। तो मैं ये सारे जुमलात आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज किए कि भाई आपको खुदा ने एक नेमत दे दी है, आपके इमाम ने कायनात की आला तरीन हकीकतों को सादा तरीन जबान में बयान कर दिया है। आप और मैं क्यों पीछे रहे? हम तो कम से कम सीख लें इसको। हाँ, कुछ चीजें फिर भी ऐसी हैं जो मैंने कहा कि हम नहीं बच पाएंगे, जो खाने पीने का मसला, ये बड़ा खतरनाक हो गया है।

दिया। ला इलाह का मतलब क्या है? कोई इस काबिल नहीं है कि वो मेरे लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बने सिवाय अल्लाह के, कोई इस काबिल नहीं है। माबूद सिर्फ खुदा है, ये सजदों का मामला नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव का मामला भी है। खुदा के सिवा किसी को हदफ ना बनाओ, खुदा के सिवा किसी पे जज्ब मत हो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत गहराई में जाएगा। फिर इमाम ने फरमाया अल्लाह की याद करो, अल्लाह की याद करोगे तुम्हारे कल्ब में सफा होगी, जला होगी। ये जो साइकिल का लफ्ज है, अगर आप नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, पुराने जमाने में अल्मीनियम के बर्तन होते थे, हमारे गलियों में वो लोग आते थे जो अल्मीनियम को चमकाते थे, उसको साइकिल कहते थे। हम लोग खड़े होकर उसका मंजर बहुत देखते थे, वो लोग इतने एक्सपर्ट होते थे, वहीं गड्ढा खोदते थे, वहीं पर टनल सा एक बनाकर उसमें पंप लगा के उसको फौरन आग के वो बना लिया करते थे, खड़े खड़े यूं करते थे। और जनाब बर्तन आपने दिया उनको, अजब रगड़ा हुआ ये वो उन्होंने लिया यूं किया और चमकता हुआ बर्तन आपको दे दिया। साइकिल, शमशीर चमका दी, बर्तन चमका दिया, साइकिल। तमाम फरमाए तुम लोग ये कुलूब जला हासिल करेंगे जिक्र खुदा से। इन्नल्लाह सुबहानहु व तआला जअल ज़िक्र जलाअन लिल्कुलूब तस्मउ बिही बादल बकरा, जिसके बाइस अगर दिल पाकिजा हो जाए, ये साइकिल मिल जाए तो क्या होगा, जिसके बाइस वो बहरा होने के बाद सुनने लगे, अंधेपन के बाद देखने लगे, दुश्मनी और इनात के बाद फरमाबरदार हो गए। जिक्र खुदा ये करता है, जिक्र खुदा वो दिखा देता है जो लोग नहीं देख पाएंगे, वो सुना देता है जो लोग नहीं सुन पाएंगे, वो फरमाबरदारियाँ देता है जिसको दूसरे हासिल नहीं कर पाएंगे। बस ये जो हमारे पास बार बार एक क्वेश्चन आता है ना कि हमारी नमाजों में तवज्जो कम है, इसका क्या होगा? जो मुझे समझ में आता है, जब तक जिंदगी में महवर खुदा नहीं है, नमाज में तवज्जो नहीं आएगी। सुबह से शाम तक मैं गैर खुदा के लिए भागूं दौड़ूं और दोपहर को मैं चाहूं तवज्जो आ जाए, ये नहीं होने वाला है, कुछ भी कर लो नहीं होने वाला है। अच्छा, अब मुमकिन है कोई ये कहे मौलाना हम सुबह से शाम तक गैर खुदा के लिए नहीं दौड़ रहे, हम खुदा के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन ये तो हम कह रहे हैं ना, हम लोगों की नियतों में बहरहाल कुछ ना कुछ और भी आ जाता है। मैं अपने आप को रख के कहता हूँ भाई मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, फतूर नहीं आ सकता नियत के अंदर, आ सकता है शोहरत का फतूर आ सकता है, दौलत का फतूर आ सकता है, ताकत का फतूर आ सकता है, ये सब बदबख्तियाँ आ सकती हैं। तो ये सब हम लोगों के साथ चलता रहता है, इसकी वजह से हमारे दिमाग बिखरते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। और जितना हम दो नमाजों के दरमियान गैर खुदा के ऊपर तवज्जो देंगे, उतना ही नमाज में गैर खुदा कूद कूद के आएगा। अगर नमाज के अंदर सिर्फ खुदा चाहिए तो हमें नमाज के बाहर सिर्फ खुदा सोचना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस नहीं करें, आप कारोबार नहीं करें, आप ऑफिस में नहीं जाएं, आप बच्चों के साथ नहीं बैठें, फैमिली में ना जाएं, नहीं जाएं, सब खुदा के लिए करें, कमाल तो यही है। वरना क्या है, वरना रूहबानियत एक रास्ता, जाओ गार में बैठ जाओ, वो खुदा ने कबूल नहीं किया। दूसरा रास्ता ये कि दुनिया परस्त हो जाओ, नमाज ही ना पढ़ो, वो भी खुदा ने कबूल नहीं किया। जो खुदा ने कहा है वो ये है कि सबके दरमियान रहो लेकिन मेरी खातिर रहो, ये खुदा ने माना है। और अगर खुदा हमें ये रास्ता बता रहा है तो क्या ये हो सकता है कि ये नामुमकिन हो? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमारी ताकत में नहीं होता तो खुदा ने हमें ये हुक्म क्यों दिया था? वह इसका मतलब हमारी ताकत में, ये के बाद दीगरे हर अहद, ये जरा समाज फरमाइएगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद मोहम्मद। आपने वो जुमला एतराज सवाल सुना होगा कि सारे अंबिया मिडिल ईस्ट में क्यों आए, बहुत दफ़ा सुना होगा, पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने सुना है, उसके पता नहीं कितनी दफ़ा जवाब दिया है। ठीक है, इमाम यहाँ पर एक जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, इसमें वो मसला हल होता नज़र आ रहा है। इमाम ने फरमाया कि हर अहद और अंबिया से खाली दौर में, यानी मसलन कोई दौर है जहाँ पर अंबिया नहीं है, आप कहने चाइना है, बस यानी इंडिया है, फला फला कोई मुल्क है, कोई ज़माना है जब अंबिया नहीं है, तो क्या है फिर वहाँ पर? इमाम ने फरमाया यके बाद दीगरे हर अहद, इमाम फरमाया ये मुसलसल है।

कहने लगा आपके पीछे, कहने लगा फिर तो जहन्नम में जाओगे। बहुत मजाक करते थे अहदुल्ला खाजी। तो एक आदमी ने इनको हंसते हुए देखा तो कहने लगा ये तो बहुत ही हंसू आदमी है, बहुत ही हंसते हैं तो ठट्टे लगाते हैं। तो उसके दिल में आया कि ये कैसा आदमी है जो इतना हंसता है। तो फिर कभी उसने रात देखी, फिर उसको समझ में आया कि भाई ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो हंसते भी हंसाते भी थे लेकिन मामला कुछ और था। तो एक दिन इनका बेटा बैठा मजलिस पढ़ने के लिए, पूछे बगैर, घर में मजलिस रखी थी, पूछे बगैर बेटा बैठ गया। ऐसे वो ज़्यादातर कहते थे कोई और बैठे, वो बेटा बैठा और उसने बहुत लंबी मजलिस पढ़ दी। अब वो सारे उलमा वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, अब वो उनके एहतराम में, सैयद अली काज़ी के एहतराम में बैठे रहे कि भाई अब इसकी जवान की सुनो, वो सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। तो उसने आखिर में पहुँच कर कहा कि रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। तो उन्होंने कहा रहमल्लाहु मन क़रा अल बकरा। इतनी मजलिस पढ़ी है तुमने, इतनी लंबी, तो अब फातिहा नहीं बकरा चाहिए होगी अब तो तुम्हारे लिए। तो लेकिन ये कौन है? ये वो है जिसको इमाम खुमैनी आकर पूछते हैं कि क्या होने वाला है। हाँ, इमाम खुमैनी अपनी जवानी में नजफ में थे तो एक दफ़ा इनके पास आए, और पता नहीं बहरहाल इन लोगों की सेटिंग कहाँ पर हुई होगी, फ़ोन तो थे नहीं उस ज़माने में। तो इनके एक शागिर्द थे आयतुल्ला खाजी के, अब्बास लो दिमाग से हुजानी मेरे ख़्याल में नाम था। तो वो ये चूँकि आँखों से भी नाबीना तकरीबन हो गए थे तो किताब नहीं पढ़ सकते थे, और लंगड़ा के भी चलते थे, जिस्म में तो बिल्कुल ही बेचारे ख़त्म। तो घर पे दस्तक हुई तो वो गए शागिर्द, उन्होंने आके बताया कि कोई आए हैं आलिम अजम से यानी ईरानी, और दो उनके साथ हैं और अपना नाम रूहुल्ला मुस्तफ़ावी बता रहे हैं। तो रूहुल्ला खुमैनी नहीं बताया, रूहुल्ला मुस्तफ़ावी बताया, चूँकि बेटा मुस्तफ़ा था, वो शहीद भी हो गया था। तो कहा रूहुल्ला मुस्तफ़ावी, कहा बुलाओ। तो वो आए तो आयतुल्ला सैयद अली काज़ी ने इतनी रिस्पेक्ट दिखाई कि शागिर्द परेशान हो गए कि ऐसा तो कभी नहीं देखा था। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाई इमाम खुमैनी के, जबकि वो अभी नजफ में थे, अभी तो इनकलाब कोई कहानी नहीं उस वक्त। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाई, तो शागिर्द भी देखने लगे कि इस बंदे को आज तक कभी नहीं देखा था, ये पहली दफ़ा नज़र आया है और इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आगा काजी दिखा रहे हैं। खैर बोल तो कोई कुछ नहीं सकता था, सब खामोश बैठे रहे। तो सामने एक अलमारी थी, वो चूँकि सैयद अली काजी तकरीबन नाबीना थे तो वो किताब निकाल नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। तो ये जो शागिर्द थे इनके, अब्बास खुजानी मेरे ख़्याल में इनका नाम यही था, तो उनसे कहते थे कि फ़लाँ किताब निकालो। अच्छा, उनको सैयद अली काजी को सब रटी हुई थी कि कौन सी किताब काम है, इसको भी अर्ज़ करूँगा कि रटी हुई का मतलब क्या है। तो वो कहते थे कि मसलन उस किताब को निकालो, वहाँ पर रखी हुई है। तो वो एक्सपर्ट थे किताब निकालने के, उनको पता था कि इस पूरी अलमारी के अंदर कौन सी किताब कहाँ रखी है। तो जब इमाम खुमैनी बैठ गए, ये भी सब बैठ गए, तो इन्होंने कहा कि ये देखो उस जगह पर तीसरे मसलन लाइन में ये किताब रखी है, वो निकालो। तो इनके जो शागिर्द हैं वो कहते हैं मुझे पता है कि वहाँ ये किताब नहीं है, है ही नहीं। और उन्होंने कहा कि ये फारसी में है, तो कहने मुझे पता है कि इस अलमारी में फारसी की किताब है ही नहीं, कोई सारी अरबी की किताबें, वो अदीब आदमी थे, वो फारसी पढ़ते ही नहीं थे। अब इन्होंने कहा कि उस्ताद इस अलमारी में मुझे नहीं याद आता ये किताब है, कहने नहीं नहीं है, तुम निकालो। अफोद अंधे हैं, नाबीना है, नाउज़ुबिल्लाह, अंधा कह रहा हूँ। तो वो उन्होंने कहा ढूंढा ढांडा तो एक किताब नज़र आ गई, कहने मुझे पता है यहाँ पे नहीं होती ये किताब, पता नहीं किसने रखी यहाँ पे, बार वो किताब निकाली। कहाँ पढ़ो? तो उन्होंने कहा कहाँ से पढ़ूँ? कहने कहीं से भी खोल के पढ़ो। तो उन्होंने यूँ खोला, कहने एक कहावत है, हिकायत है, कहने हाँ हाँ हिकायत पढ़ो। तो कहने हिकायत है कि कोई आलिम कहीं पर रहता है और उसके इलाके में कोई बहुत ज़ालिम बादशाह है, और वो आलिम उस बादशाह के ख़िलाफ़ काम करता है और वो लोगों को जमा करता है और उस बादशाह को वहाँ से निकाल के फेंक देता है और वहाँ पर इलाके में दीन इस्लाम को नाफिस करता है। हिकायत ख़त्म हो गई। कहने हाँ हाँ यही सुननी थी, और इमाम खुमैनी से कहा कि यही है। तो इमाम खुमैनी ने भी सुना, कहा ठीक है, और उसके बाद जनाब फिर खुदा हाफिज़ करके चले गए। तो वो कहने के वो जाने लगे तो फिर उन्होंने वही गैर मामूली रिस्पेक्ट दिखाई, छोड़ने गए, ये किया वो किया।

कहने के जब हम वापस आए तो अब हम दो चीज़ों पे परेशान, एक तो ये बंदा कौन है जो आज तक नज़र नहीं आया था और आया तो ये सब कुछ हो गया, दूसरी बात ये कि किताब कहाँ है, यहाँ तो थी नहीं ये किताब। फिर साथ में एक और मसला है, इतना बड़ा आलिम हिकायत सुनने आया था, भाई कोई रिवायत सुनाओ, ये क्या हिकायत सुनाई आपने। तो जब वो बैठे तो उनसे पूछा ये कौन है, तो कहने ये कि ये ईरान के आलिम हैं,

आपका काम यह है कि आप वो चुनें जो आपको इमाम खुद देना चाहते हैं, न वो चुनें जो मैं लेना चाहता हूं, नहीं, वो चुनें जो इमाम देना चाहते हैं। इमाम क्या देना चाहते हैं? इमाम शहादत देना चाहते हैं। हम सारी जिंदगी या हुसैन करें और लश्कर में इमाम जिस लश्कर के सरदार हैं वो शहीदों का है, अब जरा तसव्वुर करें ये कितना अजीब होगा कि या हुसैन तो हम करें और लश्कर में कोई और हो, ये तो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल साफ सी एक बात करूंगा, या तो गर्दन कटा के दुनिया से जाएं, शहीद होके जाएं, या दुनिया में वो करके जाएं कि शहदा के साथ उठा दिए जाएं। ये दो रास्ते हैं, ये दो रास्ते हैं, कोई ना सोचे एक रास्ता है, नहीं, ये दो रास्ते हैं। या गर्दन कटा के जाएंगे, शहीद होके जाएंगे, चाहे वो गर्दन कटने का मतलब सिर्फ गर्दन ही नहीं है, शायद गोली लगे, ये हो वो, एक रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि शायद गर्दन न कटे लेकिन शहादत मिल जाए, ये भी रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। खुदा इंशाअल्लाह सैयदुश्शहदा की मोहब्बत के सदक़े में नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। दो जुमले मुझे मसाइब के अर्ज़ करने हैं, चंद जुमले मसाइब के अर्ज़ करने, ताकि मेरे और आपका दिल सैयदुश्शहदा की तरफ जाए। दिलों का इमाम हुसैन की तरफ जाना बहुत अहम है, दिलों की पाकिजगी के लिए, दिलों की जिला के लिए इमाम हुसैन का जिक्र अक्सीर है। अगर खुदा सिर्फ अपनी ज़ाहरी इबादतों के अंदर ये जिला रखता तो शायद हम लोग पीछे रह जाते, लेकिन हमें बुलाने के लिए सैयदुश्शहदा वसीला है। वो मैंने इस जुमले को सही लीजिएगा, गलत नहीं लीजिएगा, सैयदुश्शहदा वो हिदायत का चिराग हैं जिस तक हम अंधे भी पहुंच पाएंगे, अंधे भी पहुंच पाएंगे। वसीला इस सेंस में, कुछ और ना लीजिएगा। क्यों ऐसा है? कोई बाप अपने 6 माह के बच्चे को लेके खड़ा है, दिल दुख रहा है या नहीं दुख रहा है? अब इसको भी कोई ना समझ सके भाई, मुमकिन है कोई कुरान की आयत ना समझ सके, हदीस ना समझ सके, ईसार ना समझे और दूसरी चीजें ना समझे, तो 6 महीने के बच्चे की तो प्यास समझ लेगा, इतना तो समझ लेगा, इसको तो कदर की नजर से देखेगा। इमाम हुसैन के नाम पे आएगा तो सही ना। आज दुनिया में आप जाएं किसी से भी कहें फला हादसा हुआ, उसमें एक बच्चे को नुकसान पहुंचा, लोग खुद ब खुद रोते हैं कि भाई ये क्यों हुआ। अब कोई कहे कि इमाम हुसैन दुश्मन के सामने अपने बच्चे को लेकर आए और उन्होंने कहा मुझे पानी नहीं पिलाते, नहीं पिलाओ इसको तो पिला दो। हुज्जत पूरी हुई थी या नहीं हुई थी? हुज्जत पूरी हो गई थी। आज जो अजीब रिवायत है हमारे पास, एक बड़ी अजीब रिवायत है, अभी चंद दिन पहले देख रहा था, रावी कहता है कि मैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास आया, मैंने बताया मुख्तार की हुकूमत बन गई, मुख्तार ने फलां को मार दिया, फलां को मार दिया, फलां को मार दिया। देखा इमाम ने गिरिया किया, उसने कहा इमाम आपने गिरिया क्यों किया? कहा ये बताओ हुरमुला को मारा या नहीं मारा? कहा उसका क्या जुर्म था? कहा मेरे अली अजहर के गले पे तीर चलाया, अली अजहर के गले पे तीर चलाया। आज तो इतना अजीब है ये मौला अली अजहर का मामला। हमें बस रिवायत है, मैं बचपन से सुनता था, सोचता था, और रिवायत में ये बयान करते हैं कि तीर चला और गले में सुराख होकर आर पार हो गया, ये हमने बचपन से सुना था। अच्छा, हम सुनते भी थे, जाहिर मातम भी गिरिया भी सब कुछ करते थे, लेकिन शेख अब्बास कुम्मी की रिवायत ने हिला के रख दिया, हिला के रख दिया। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा कि तीरे से तम चला और बच्चे का गला कान से कान तक सिपा हो गया। अल्लाह, कान से कान तक सिपा हुआ। अगर ये कान से कान तक जिबा ना होता ना, तो मा

0: बहुत शुक्रिया। क्या वक्त हो रहा है, जब्त कर पाई तुम?
1: नाचारी की क्या दवा, रोजे की मन्नत मांगी है नायला के लिए।
0: नायला, अल्लाह की पनाह नायला से। अगर तुमने घोड़े की सवारी की मश्क की होगी तो तुम जानती होगी कि जब घोड़ा अपने सवार को जमीन पर गिरा दे तो सवार के दिल से खौफ दूर करने का बस एक ही तरीका है कि वक्त जाया किए बगैर दोबारा उसे घोड़े पर सवार कर दिया जाए। नायला का हल सिर्फ शादी है, ताकि घर के कोने में बैठ जाए।
1: तो उस खत में मेरी बेटी की शादी की बात की गई थी जो आपकी नींद उड़ गई, बताइए मुझे।
0: खत? कैसा खत?
1: कैसा खत? वही खत जो कल से आपके हाथ में है।
0: वो शाम से खत तो था, लेकिन उसमें नायला की शादी की कोई बात नहीं थी।
1: तो फिर क्यों इतना परेशान है?
0: तुम्हें नहीं पता, ये सब सियासी चालाकियां हैं। अगर हमने खत के जरिए अपनी अपनी भाईचारगी यजीद से साबित कर दी तो ठीक, नहीं तो समझ लो कि ये तिजारत खाना बगैर तिजारत की है।
1: लानत हो उस पर कि आजकल उसका खत हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। काश ऐसा काम करो कि इनका मुंह बंद हो जाए।
0: क्या करूं? नहीं पता कौन सही है और कौन गलत, ये सब मेरी समझ से दूर है। तुम्हारी जान की कसम नहीं समझ पा रहा हूँ।
1: एक पूरे कबीले की निगाहें आपकी तरफ हैं। सियासत के हारों की आखिरी पनाहगाह आप हैं। बड़े लोग बड़ी मुसीबतों से नहीं घबराते। आप जो भी करेंगे यकीनन उसमें भलाई होगी।
0: नहीं पता, शायद सही कह रही हो, शायद ऐसा ही हो।
2: खुदा की कसम, अफसोस है कि तमाम कुफा वालों का नाम हो लेकिन तुम्हारा नाम। हर एक नाम एक उम्मीद की रोशनी है इमाम के लिए।
3: सहराओं में कहीं भूखे ना रह जाओ। कितना खाना लिया है आपने? कहीं ये खाना कम ना पड़ जाए आपको। सुन रहे हैं आप
4: बासित के प्यारे, खत को इमाम के घर तक थोड़ी लेके जाऊंगा। नामा भर तक पहुंचने में एक दो हफ्ते से ज्यादा वक्त थोड़ी लगेगा। जितनी खुराक रखी है वो मेरे लिए काफी है।
5: बहुत हुआ बेटी, ये बच्चा नहीं है जो अपने बुरे भले को ना जानता हो। उसका काम करने दो, काफी है।
3: रास्ता जानने वाला कोई दूसरा नहीं मिला जो खत इनके हवाले कर दिया?
2: या अल्लाह, बेटा तुम्हें किसने मजबूर किया ताकि ये काम करो?
4: नहीं, मजबूर क्यों, मेरी ही ख्वाहिश थी।
2: खुदा तुम्हारी मदद करे, इसका बोझ भी कम नहीं है याद रखना, लेकिन इसके होते हुए गमों गुस्से के बोझ की जरूरत नहीं है।
3: आराम से जाना, मुझ पर इससे ज्यादा सख्ती मत करना।
5: तुम्हारी इस तलखी को तुम्हारे इस हाल पे छोड़ दूंगी, लेकिन अब बहुत हुआ, बहुत हुआ, बस करो। कल आले रसूल अल्लाह को क्या जवाब दूंगी?

0: इधर देखो आया हूँ, मैं आया हूँ। बाखुदा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों इतना परेशान हो।
1: लंबे सफर की बात नहीं, अगर उस खत को तुम्हारे सामान में पा गए तो तुम्हारा काम तमाम है। खतरा बयाबानों और वादियों में नहीं है, यहीं पर है, मेरे कानों के नजदीक कूफे के दरवाजे पर है।
0: आहिया, तुम्हें अपना ईमान नहीं खो

0: तुम खुद जानती हो कि अगर जिंदा ही रह जाना होगा तो शायद मौत के मुंह से भी वापस आ सकता हूँ, और अगर मरना ही होगा तो नरम बिस्तर और कूफे के दरवाजे के बीच मर जाने में कोई फर्क नहीं है।
1: मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया, मेरी ऐसी हालत नहीं है कि तन्हा रह सकूं। आज ये कलिया बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो तुम्हारे बिना क्या करूंगी।
0: अपने सब्र का सवाब कम मत करो, उसके दुनिया में आने से पहले वापस आ जाऊंगा, और अगर तुम्हारा दिल राजी नहीं है तो अभी बता दो। वो राजी नहीं है कि मैं जबरन जाऊं।
1: अच्छी तरह सुनो, जब भी कभी तुम पर कोई सख्त और खतरनाक वक्त आ जाए, जान लो उसे अंजाम देने से पहले मुझे और होने वाले बच्चे के बारे में जरूर सोच लेना, फिर काम अंजाम देना, समझ गए?
2: खुदा की पनाह में, बासित अपना ख्याल रखना, सिर्फ तुम्हें खतरा नहीं है बल्कि हर वो शख्स जिसका नाम उस खत में है, वो सब उनका कबीला और खानदान खतरे में है। अगर इनका निशान भी उनको पता चल जाए तो मुसीबत है।
3: नक्शा वही है जिसे हम देख चुके हैं, तन्हा खतरनाक जगह दरवाजा है। लोग ख्याल रख रहे हैं कि तुम सलामती से वहाँ से गुजर जाओ, परेशान मत हो।
2: अपने चेहरे पर कोई खौफ जाहिर ना होने दो, कवि और मोहकम रहो हमेशा की।
3: मेरी दोनों आंखें तुम्हारी तरफ है, परेशान मत हो।
0: भाई की जान,
1: कुरान मजीद का साया तुम्हारे सर पर हो और तुम्हारी सलामती और आकेबत बखैरी का जामिन हो। तुम्हें खुदा के हवाले करती हूँ, खुदा की जमानत में हो।

0: बाबा की जान,
1: अपना ख्याल रखिएगा।
0: तुम भी अपना और अपनी अम्मी का ख्याल रखना।

0: लो लो, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। लो पानी पी लो।
1: सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: अगर आपके लिए मुश्किल नहीं है तो कुछ कदम चलें और कुछ बातें करते हैं।
0: सब ठीक तो है?
1: जी ठीक है
0: इंशाल्लाह। थोड़ा इंतजार करवाता हूँ।

0: नईम जरूरत से ज्यादा तल्ख मिजाज है। तुम भी एक दिन की दुल्हन तो नहीं हो, उसकी आदतों को अच्छी तरह जानती हो। आज मारेगा और चिल्लाएगा और दूसरे दिन सुबह उठेगा, तुम्हारे पांव पड़ेगा और मोहब्बत दिखाएगा।
1: उसका गुस्सा हद से ज्यादा हो गया है बाबा। मेरे बच्चों की आंखों के सामने मेरे माँ बाप को बुरा भला कहता है वो, और तमाचा मारता है। तलमा के अंदर जो भी ताकत थी वो अब नहीं बची।
0: इन दिनों मैंने उस पे बहुत सख्तियां की हैं। थोड़ा वक्त नए दिलो दिमाग के

0: खाली करो।
1: क्या चाहते हो ना मुसलमान, मेरे तमाम सरमाए को बर्बाद करके रख दिया।
2: ए लोगो, देख रहे हो, देखो कैसे हमारे माल को जमीन पे फेंक रहे हैं। देखो, खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये किसी पे रहम नहीं खाते। खुदा की लानत हो।
0: बंद करो इससे पहले कि तुम्हारी जबान तुम्हारे हलक से निकाल दूं।
1: आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान चली जाती, अहमक।
0: इस आदमी को देखते रहना, एक दूसरे को छोड़ो, एक दूसरे को छोड़ो।

0: चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए वो।
1: नाम का पता लगा के रहूंगा, और मुझे यह शख्स भी चाहिए, वो खत इसमें है।

बहुत ही सख्त हफ्ता गुजरा, इतना सख्त जैसे सवा नेजे पर सूरज। गमो गुस्सा बहुत हुआ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपनों की नाखुशी को देखूं। उठाओ और देखो तुम्हें पसंद है या नहीं। नया वित्र और कपड़े और सेवर, ये तीनों औरत को खुशहाल करते हैं। तुम्हारी खुशी घर को गर्म और रोशन करती है। हंसो बेटी, हंसो हंसो।

0: भाइयों और बहनों,
1: बलाएं दूर हों, बहुत खूबसूरत है।
0: बैठो।
1: आपने जब हमें यहाँ आने का हुक्म दिया तो मैंने गुमान किया कि तिजारत खाने के कारोबार में कोई मुश्किल पेश आई है। मुझे शोक के बाद ऐसी शादी की उम्मीद नहीं थी।
0: आज के बाद इस घर में मुश्किल कम और खुशी ज्यादा होगी।
2: कारोबार में मुश्किल पेश आने की आपकी क्या मुराद है? कुछ हुआ है क्या जिसकी मुझे खबर नहीं?

0: नहीं मालूम। मैंने गुमान किया कि नईम को तिजारत खाने से हटाना खुद एक बड़ा मसला था, या मेरे तिजारत खाने को संभालना आप सब लोगों के लिए इतना बड़ा मसला बन गया।
1: नईम मर्द है, इसकी पूरी उम्र उस काम की तरबियत में गुजरी है। इसके अजदाद इसका पूरा हसब और नसब ताजिर था। तुम परेशान मत हो दुल्हन, जब तक मैं हूं तब तक नईम के दुश्मन के हाथ खुशी नहीं लगेगी।
0: नायला के कारवा का माजरा उसकी बरखिलाफ साबित हुआ है।
1: तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डर और परेशानी के बारे में बताया। अगर हमेशा साथ रहने वाले करीजों से भी तुम्हें सुकून नहीं मिलता है तो क्या हिलाल को वापस बुला लूं? जबकि मैंने उसको बेवजह मासूल किया, लेकिन अगर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो मुश्किल नहीं।

0: अच्छा हुआ तुम आ गई। शायद तुमसे ही बात करके मेरा दिल हल्का होगा।
1: कुछ हुआ है क्या?
0: तुम मेरे इस वजनी बदन पे मत जाओ। मेरा दिल बहुत छोटा है और किसी राज को छुपाने की ताकत भी नहीं है। कुछ बात करनी थी, जब तक कोई नहीं है तमाम बात कह देती हूँ।
1: खैर हो आपकी, बोलिए।
0: इस कमरे की हालत देखो। इस कमरे में रहने वाले हिलाल अमन और आराम बख्श है।
1: खुदा उसकी हिफाजत करे।
0: मेरी माँ को बहुत जल्दी है कि इस घर में एक दुल्हन आए, और इस घर के लिए शामिन से अच्छी और कौन हो सकती है मेरे लिए।
1: तुम क्या मजाक कर रही हो आया? तुमने अभी अभी मेरा हाथ मांगा?
0: मुझे माफ कर दो कि मैंने बिना किसी तमहीद के इस माजरे को बता दिया। तुम्हारे बाबा से हाथ मांगने से पहले खुशी देखना चाहती थी।
1: तुम्हारे घर वाले हमेशा से काबिले एहतराम थे और हैं।
0: मुझे पता है कि तुम्हारे बाबा हिलाल से बिल्कुल खुश नहीं है। ना फकत इस बल्कि हर मुहिब्बे अहले बैत से वो नाराज है।
1: नहीं, मेरी और मेरे बाबा की नजरें एक जैसी नहीं हैं।
0: तो फिर इस तदबीर सोचूंगी कि कबूल है कहने से पहले खूब अच्छी तरह से देख सकूं, यहाँ तक कि बाद में बहाना ना बना सको तुम।

0: काश आप होते तो अपनी आंखों से अमर बिन हुरैज का चेहरा देखते, जैसे आसमानी बिजली ने उसके चेहरे को खाक कर दिया हो।
1: और खत का क्या हुआ? खत मिला?
0: खत तो मिल गया, लेकिन चूंकि रंग वाली देग में उस खत को फेंक दिया था, इसलिए नाम पढ़ने के काबिल नहीं रहे। उसने कहा कि बाबा को सलाम कहो और कहो कि हमेशा होशियार रहे।
1: नामा पर को बगैर खत के पकड़ने का क्या फायदा?
0: बेफायदा भी नहीं रहेगा। जहां तक मैं जानता हूँ, पूरा कूफा अली के बेटे की दावत के लिए बेसब्री से खत लिख रहा है।
1: हर खत के बीच उनके सरबराहों की मोहर भी है, लेकिन अम्र की उस बेहूदगी की वजह से उससे भी हाथ धो बैठे।
0: खत लाने वाला सामिया का दामाद था।
1: कौन?
0: बासित जिंदा है। अम्र अगर हुरैज का बेटा होगा तो तमाम बदबख्तों का नाम उसकी जबान से निकलवा के रहेगा।
2: हिनास, हिनास, हिनास, हिनास।
3: क्या हुआ आहद?
1: मेरी अजीज, अहला को तनहा मत छोड़ो।
3: तनहा नहीं, तलमा उसके पास है।
1: मेरा मतलब तुम्हारी खुद उस पर नजर रहे।
4: क्या हुआ? अभी आपको बताता हूँ। सलाम बानो।
0: जनाब औहद कहाँ है?
3: अंदर है।
4: जनाब शर्मिंदा हूँ, हमारे साथ चलिए, तिजारत खाने में हमला हुआ है।
5: लानत हो शैतान पर, हमारे होते हुए ये क्या हुआ?
6: आया बेटी, गम मत करो, इंशाअल्लाह बासित की रिहाई का रास्ता निकालेंगे। अपने दिल को खुश रखो कि तुम्हारे शौहर की शुजाअत, अलबत्ता तुम्हारे भाई की भी शुजाअत कि तमाम शियों की जबान पर चर्चा हो रही है।
7: खुदा अम्र बिन हुरैस की नस्ल को खत्म कर दे कि बहुत ही बेवक्त पहुंचा।
8: मुझे उसकी जान जाने का खतरा है। उन्होंने कूफे के बुजुर्ग और बच्चों के सामने उस पर रहम नहीं किया। कैद खाने में लोगों की नजरों से दूर क्या सितम ढाएंगे?
3: आप लोगों को क्या हो रहा है? डर को अपने दिल में जगह ना दें, इसका उस खुदा पे छोड़ दें। नुमान बहुत मोहतात है, वो एक शिया के कत्ल का हुक्म देने में तामुल करेगा जिसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है।
6: बहुत खूब, ऐसा ही है। अगर हम अपनी आवाज उठाएं तो इन बुजिलों का डर जाहिर हो जाएगा, लेकिन अफसोस है कि अलवी अब ना फरियाद कर सकते हैं और ना ही खुलकर एतराज कर सकते हैं, वरना वो खुद जानते हैं कि हम उनके नीचे दबी हुई एक आग हैं कि एक रोज हम उन्हें जलाकर राख कर देंगे।
7: आज मेरी नजर सिर्फ उस पर जमी थी। खुदा की कसम, उनको इस माजरे की खबर थी। इब्ने हरीस पहुंचते ही सीधा बासित के पास चला गया। हिलाल ने भी देखा।
9: तुमने तो तीर मारा, ऐसे मारते कि वहीं पर ढेर हो जाता।
10: ऐसी बातें करो कि अक्ल के मुआफिक हो।
3: हिलाल,
10: इब्ने हरीस की जान लेता तो इसका बदला इस घर के दामाद की जान थी, और इसी तरह तुम सब की जान जिनका नाम उस खत में लिखा हुआ था।
6: आज की सुबह क्या सोच रहे थे और क्या हो गया?
3: आपके इसी ख्वाबो ख्याल ने मेरे शौहर की जान को खेल बना दिया।
10: शमीन,
11: करना लेकिन कहना पड़ेगा कि क्या हमारे दरमियान कोई ऐसा ना आशना है जो तुम्हारे दामाद के बारे में मुखबिरी कर सके? क्या तुम्हें हिलाल पर पूरा भरोसा?

0: ये मेरे शौहर का खून बहा, मेरी औलाद पर हर माल से ज्यादा हलाल है। तुम तो हलाल और हराम और हक और नाहक को अच्छी तरह जानते हो। मेरा इतना मुंह खोलने से पहले मेरा हक क्यों नहीं दे रहे थे?
1: मेरे इख्तियार में नहीं था कि...
2: बेवजह बातों को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, रहने दो, इससे अभी हमें बहुत काम है।
3: ठीक है,
2: वादा किया है कि अपना हक ले और अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे।
0: मैं कूफा से आशना नहीं हूं, उस मर्द के कब्र के अलावा जो मेरे लिए बनाई। मेरा खानदान और घर शाम में है, किसी कारवां के हवाले कर दे जो मुझे शाम पहुंचा दे, और मेरे रास्ते का खर्चा भी मिल जाए तो अच्छा है।
2: पूरे से गिरा खराब अनाज जितना दूर हो अच्छा है।
3: चलो
2: जरा ठहरो, तुम्हारे जाने से पहले कुछ पूछना चाहता हूं। तुम्हें तो मेरे घर का पता था, तो फिर मुझे ढूंढते हुए यहां क्यों आई?

0: मैं भी देखूं जरा मेहंदी से क्या बनाया हाथों पे। मुबारक हो, दिखाओ मुझे, क्या बात है।
1: अरे वाह, मेहंदी लाल हो गई, देखो ये अच्छी लगी है ना?
2: नहीं तो दोनों की एक जैसी है।
0: बहुत अच्छी है। हाँ
1: दादी जान, अभी दादा जान और बाबा जान तो नहीं है जो हमें डांटेंगे, क्या हम दादा जान की तलवार को देखने जा सकते हैं?
2: आपको खुदा का वास्ता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि तुम्हारे दादा जान को पसंद नहीं है कि उनके सामान को कोई हाथ लगाए? खुश हुसैन उनकी तलवार को।
1: आपको खुदा का वास्ता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए।
0: तो सिर्फ एक लम्हा और एक निगाह के लिए, और सामान को हाथ मत लगाना, ठीक है?
1: ठीक है, वादा।
0: ठीक है, आज की रात तुम्हारे नाम, तुम दोनों के दिल की मुराद पूरी हो जाएगी, ठीक है? चलो।
3: ऐसा वक्त बहुत कम ही पेश आता है कि सिर्फ हम दोनों हो और कोई ना हो। मेरे गले में एक ऐसा राज फंसा हुआ है कि अगर अपनी जुबान ना खोलूं तो मर जाऊंगी।
4: खुदा की पनाह, कहो।
3: नहीं कह सकती, मुझे किसी पे भरोसा नहीं।
5: ए लड़की, 10 लुकमा रोटी और शहद लेकर आओ।
1: मैं? ऐसे तो आप अकेली हो जाएंगी। जनाब औहद ने कहा है कि आपसे जर्रा भर भी दूर ना हटूं।
4: मुझे दोबारा ना कहना पड़े।
1: जी।
3: ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है, कोई पीछे से आकर खंजर ना घोंप दे। काश उस रात मैं गूंगी हो जाती और तुम्हारी शाम के सफर का माजरा ना बताती। मुझे क्या पता था कि खून उनकी आंखों पर पट्टी बन जाए और अपने को गैरों से जुदा नहीं कर पाएंगे।

0: हमारा जोर कहाँ और तकदीर का खेल कहाँ? अंजाम वही होगा जो होना है, क्या पता। शायद अगर उस रोज यजीद की दुल्हन बन जाती तो शायद ये दिन मुझे हरगिज ना देखना पड़ता।
1: साफ साफ बताओ मुझे, इस तरह इशारों से तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है।
0: तुम्हें क्या लगता है कि राकिब ने अकेले ही यजीद से तुम्हारी शादी की साजिश रची थी? नहीं, इन सब का फैसला लेने वाला औहद था। सब कुछ राकिब बेचारे ने अपनी गर्दन पर ले लिया ताकि औहद की आबरू रेजी ना हो।
1: बहकी बातें मत करो।
0: तुम्हारे बाबा की इज्जत यजीद के दरबार में सौदा थी, जिसकी कीमत तुम थी प्यारी।
1: क्या मतलब है इसका?
0: मतलब ये कि अपनी आंखों को सही से खोल लो और अच्छी तरह से देखो कि कैसे कल माविया का दस्त बोसा और आज यजीद का दुश्मन कुदरत की मसनद पर बैठा है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम्हें अपने बाप का चेहरा याद है? जब उसने रागिब की बेगैरती की खबर सुनी तो उसके चेहरे पे ताज्जुब देखा था। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ताज्जुब बेखबरी की निशानी है नायला। मैं औहद को भी जानती हूं और तुमको भी। अगर वो बेखबर होता और उस खबर को तुमसे सुनता तो रागिब के जनाजे को आग में जला देता, ना कि उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ता। तुमने खुद से सवाल नहीं किया कि कैसे नईम रागिब के घर को तबाह कर रहा है, लेकिन तुम्हारा बाप तंबीह करने के बजाय उसे अपनी मसनद पर बैठाता है। इन जख्मों को देखो, ये तुमसे मेहरबानी का सिला है। मुझ में तुम्हारी हालत देखने की ताब नहीं थी नायला। मैं तुम्हारी जगह नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं खुद अपनी जान का फैसला करती। अगर चेस का नतीजा मौत ही होती, ऐसे बाप के दस्तरखान पे बैठना कि जो खरीदता बेचता है और मार देता है, बिल्कुल आसान काम नहीं है।
1: मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूं?
0: हकीकत तलख है मेरी प्यारी, लेकिन इस बात को मत भूलो कि अव्वल और आखिर तुम एक कनीज की ही बेटी हो।

0: Hina! Hina!
1: खत में दस्तखत करने वालों के नाम बताओ और जाओ।
2: मरने के डर से तुमने अपनी जबान तो नहीं खोल दी, बताओ मुझे।
1: अगर ये हुसैन का हुक्म है तो इन बदबख्तों की जबान से एक एक नाम उगलवा लूंगा।
3: मेरे दिल का शिकार कर लिया और बेखबर हो।
4: तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो तुमने मुझ पर शक किया?
2: तुम्हें कहना है कहो, मगर अली के दुश्मन के साथ हम प्याला होना जुल्म है।
5: इब्ने हुरैस के जिंदान को मजाक समझ रखा है।
3: मैं ऐसे दर्द के साथ जिसने मेरी हड्डियों को तोड़ दिया और जिगर में आग लगा दी जिंदा नहीं रह सकती हूँ।
1: सारे बलबे के पीछे
6: वालेकुम अस्सलाम।
7: शहादत इस घर वालों के लिए नाश्ता नहीं है।
8: सलमा ने अपना मुंह खोल दिया और सब कुछ बोल दिया।
4: ये जो इल्जाम इस बार मेरे ऊपर लगाया गया ये मेरा नहीं तुम्हारा काम है।
7: जब मुसलमानों की नामोस तुम्हारी पनाह में आई है तो तुम ऐसा कर रहे हो।
9: Every child deserves a place where they feel safe, secure, valued, inspired, and loved. Welcome to Al Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence, and compassion. Give your child a place to belong, learn, and flourish. Admissions are now open at Al Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by